नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तद अनुसार 13 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: इस समय सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

চিন্তন। रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 310वां। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर। आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर की स्वर साधना की अनुपम परंपरा, कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। ये आप किराना घराना का भाग 13वां सुनेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिए सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के कार्यक्रम का समय है 7:30 पर, समाचार सुबह 8 बजे। त्रिवेणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर और दोपहर 2 बजे। आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों से सजा कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात्रि 9:30 पर, जो केंद्रित है अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। आलेख स्वर रेणु बंसल का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुति तेजश्री कामले। दिन में 11 बजे विविधा के अंतर्गत हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूपक हिंदी साहित्य कल और आज, सहभाग प्रियवंद यतेंद्र मिश्र, कैलेश वानखेड़े, मनोज रूपड़ा, विनीत कुमार, उर्मिला शिरीष, स्वर आलेख ममता सिंह, प्रस्तुति तेज शिकामले, संपादन सहयोग मनीषा सिंह। 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर, फेसबुक पेज पर कमेंट्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। 2:15 पर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे कार्यक्रम मनचाहे गीत, 3:30 पर कार्यक्रम होगा नाट्य तरंग, नाटक साबुन की टिकिया, साकी के लिखे नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिप्पर। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के फिल्मकार विमल राय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, संपादन सहयोग अम्बालिका सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:00 समाचार हिंदी में, 6:05 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर झरोका की रूपरेखा सुनिएगा, 6:35 पर संध्या रंजन चित्रपट संगीत और 7 बजे सुनिएगा विशेष जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल गुरजेंद्र सिंह सूरी की शौर्य गाथा, प्रस्तुति तेज श्री कामले, स्वर और आलेख मंजरी वर्मा का, संपादक सहयोग मनीषा सिंह। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, क्लेरनेट मास्टर इब्राहिम चौधरी। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रसन्न राजेश और राकेश, लेखन वीएम आनंद, निर्देशन श्याम सुंदर। रात 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर संध्या समाचार, रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात,

भारती राष्ट्रीय यह वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन श्री रामचरितमानस के भाग का 310वां आज आप सुन सकेंगे।

अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हां, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी।

0: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में और डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, हाँ? के किराना घराने की गायकी को धैर्यपूर्ण गायकी क्यों कहा जाता है?
1: धैर्यपूर्ण गायकी इसलिए कहा जाता है कि विकास बिना, जल्दबाजी के बिना क्रमशः और गहराई इसमें दिखाई जाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और इसकी गायकी श्रोता को एक शांति, एकाग्रता और आत्मिक आनंद लेने का अनुभव कराती है। इस घराने में राग का विस्तार जो है वो अत्यंत धैर्य, संयम और क्रमबद्धता से किया जाता है
0: जी।
1: बल्कि धीरे धीरे उसका स्वरूप विकसित किया जाता है। इसीलिए
0: हाँ।
1: राग के स्वर का अलग अलग ऊपर उभारते हुए
0: जी।
1: उसके आपसी संबंध और महत्व को स्पष्ट किया जाता है। इससे श्रोता राग के स्वरूप को सहजता के अनुभव कर पाता है। मंद्र सप्तक से मध्य और मध्य सप्तक से तार सप्तक भी एक एक क्रमशः बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है और इस क्रमिक विकास से राग की संपूर्ण छवि श्रोता के सामने स्पष्ट हो जाती है। और जहां कई घरानों में राग विस्तार के साथ एक लयकारी बोलबाट या तानों का प्रभाव अपेक्षाकृत शीघ्र दिखाई देता है
0: जी, जी।
1: यही किराना घराना राग के स्वरूप को धैर्य पूर्वक स्वर प्रधानता और भावपूर्ण ढंग से विकसित करता है।
0: जी, जी, जी।
1: यहाँ उद्देश्य श्रोता को राग की गहराई और स्वर सौंदर्य का अनुभव कराना होता है। धैर्य पूर्णता का विस्तार का अनुभव करते हुए उस्ताद मशकूर अली खान
0: जी, जी।
1: उनकी गायकी आप सुनो और उनके गायकी में ये जो धैर्य पूर्णता दिखाई देती है, स्वर में जो वजन रहता है,
0: हाँ।
1: हम उनका चांदनी केदार सुनेंगे।
0: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

0: धैर्यपूर्ण गायकी किराना घराने की जो है वो इस ख्याल को सुनकर के उस्ताद मशकूर अली खान साहब की आवाज में हमने सुना
1: बिल्कुल
0: पूरी तरह स्पष्ट हो गया। और इसे सुनते हुए ये भी लगा कि कौन कौन से गाने होंगे फिल्मों से जो इस राग पर चांदनी केदार पर आधारित होंगे।
1: चांदनी केदार तो बहुत कम लोग गाते हैं
0: जी जी,
1: और इस राग में मुझे लगता है डायरेक्ट चांदनी केदार में गाना मिलना मुश्किल है ना। केदार की छाया लेकर
0: जी
1: हम चांदनी केदार का आनंद उठाएंगे
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत कौन सा होगा?
1: घर फिल्म में एक बहुत ही प्यारा गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गुलजार ने लिखा हुआ है।
0: आपकी आंखों में कुछ महके
1: राहुल देवर्मन का संगीत,
0: आइए सुनते।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नया दौर इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत।

रेल का डिब्बा, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में सुनिए शकील बदायूनी की ये रचना, जिसकी धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जन्म जन्म के फेरे, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे रचा है, एसएन त्रिपाठी का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में नूर लखनवी का लिखा ये गीत, संगीत सी रामचंद्र का।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मदर इंडिया फिल्म का गीत। शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है। शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: छोटे बाबू फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे, जिसे गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। इंदिवर ने इसकी अल्फाज लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: याद है तुझे वो मेरा टांग तोड़ सांग
1: सांग छपा है तो वो थी मुर्गे की बांग
0: याद है तुझे वो मेरा टांग तोड़ सांग
1: सांग छपा है तो वो थी मुर्गे की बांग
0: तूने उसी बांग पे कहा था वन सवार।

फूल बने अंगारे, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और कमल बारूट की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के होगा थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आगाज करते हैं हम जोली फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे स्वरों में गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इसे

जाने ओ सनम, जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे, क्यों होने लगी जी में टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

रजिंदर कृष्ण का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है। फिल्म का नाम सच्चाई।

नौशाद का संगीतबद्ध किया गीत अब सुनिए, जिसे लिखा है रजिंदर कृष्ण ने, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इसे स्वर दिए हैं। गवार फिल्म का नाम।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोपी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रजिंदर कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4, मैं
2: कैसे
1: हूँ, बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला।
3: गोपी, गेस व्हाट, वाटर स्टैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टिंग फटे।

हम तो करेगा सच, हम लव यू वेरी वेरी मच, हाउ गुड गुड नोज योर गर्ल रेड रोज।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए आज का। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत इस फिल्म का नाम है और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
3: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
4: I would like to say that the outcome document.
5: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
4: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट। ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
9: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
10: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
6: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
11: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का यह दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
13: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
14: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अंबिके ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। नमस्कार। दीवाना, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले प्रेम और जुनून की तस्वीर उभरती है। किसी के प्रति ऐसी गहरी चाहत जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाए, उसे दीवानगी कहा जाता है। प्यार में डूबा व्यक्ति अपनी प्रिय की एक झलक के लिए बेचैन रहता है और उसकी मुस्कान में अपनी खुशियां तलाशता है। दीवानगी केवल प्रेम तक सीमित नहीं होती, किसी सपने, कला, संगीत या अपने लक्ष्य के लिए भी इंसान दीवाना हो सकता है। दरअसल दीवानापन उस जुनून का नाम है जिसमें दिल किसी चीज को पाने या महसूस करने के लिए पूरी शिद्दत से धड़कता है।

दीवानगी में एक अजीब सी खूबसूरती होती है। जब इंसान किसी के प्यार में दीवाना होता है तो उसे हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। मौसम सुहाना हो या उदास, हर एहसास उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। कभी उसकी आवाज दिल को सुकून देती है तो कभी उसकी दूरी बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुरानी गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं, बल्कि ऐसी भावनात्मक अवस्था भी है जहां दिल अपनी बात दिमाग से ज्यादा मानता है और प्रेम की अनुभूति जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है।

कई बार दीवानगी किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए होती है। कोई गायक संगीत का दीवाना होता है, कोई कलाकार अपनी कला का, तो कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून में दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दीवानगी इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े काम उन लोगों ने किए जिन्हें अपने सपनों पर असाधारण विश्वास था। प्रेम की दीवानगी हो या सफलता की, इसकी असली खूबसूरती तब है जब वो इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। शायद इसी एहसास को पुराने गीतों ने बार बार अपने अंदाज में आवाज दी है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला प्रोग्राम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी हैं शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित, ऋषि रागा पृथ्वी और गीतिका मांजरेकर ने। आइए इस गीत को सुनते हैं।

इस पारंपरिक गीत को संगीतबद्ध किया आदित्य देव ने। साथियों, आज हरतालिका तीज शुरू हो रही है। हरतालिका तीज महिलाओं से जुड़ा एक खूबसूरत पारंपरिक पर्व है। इस अवसर पर महिलाएं सजती सवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पारंपरिक परिधान पहनकर त्योहार की खुशियां मनाती हैं। कई जगहों पर लोकगीत, झूले और मिल बैठकर उत्सव मनाने की परंपरा भी देखने को मिलती है। वहीं इसी उत्सव माहौल के बीच कल मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। इन दिन घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है और सजावट के साथ उत्सव का माहौल बनता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है दम लगा के हाइशा। गीत को गाया है पेपॉन ने, वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा है, अनुमलिक का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गब्बर इज बैक, इस फिल्म का गीत सुनिए देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है चित्रलोक विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं तुलसी कुमार, आलम खान, ऐश्वर्या मजुमदार और डब्बू मलिक की आवाजों में फिल्म एक पहेली लीला। इसका गीत कुमार ने इसे लिखा है, उजैर जसवाल का संगीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, वेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी

0: स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। ABCD 2 इस फिल्म का गीत अब सुनिए दिव्या कुमार और प्रिया शर्मा की आवाजों में। मयूर पुरी ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत, सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल की धुन।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत जिसे सुरों में ढाला है प्रीतम ने, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आइए आपको सुनवाते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत, मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
1: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत सुनिए, कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आप सभी को रेनू बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेश का था और परदेश महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। और मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतुस थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।
2: जैसे

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिङ को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हुँ त्यो त्यही दार्जिलिङमा सिकेको, अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिन कोबाटै सिकेको, अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी

की कहानी है जो अपने गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

0: महिमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा।
1: राम हो राम हो राम हो राम हो।
0: फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है, वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी कारगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
4: उस
3: जहां
4: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और somehow एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं, एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
3: बिल्कुल, वो महफिल ही ऐसी होती है,
4: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है वो। तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इनका मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
3: तो बाबा आजमी ने आपको,
4: उन्होंने तो भैया एक हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही है अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
3: वो फ्लैट हो गया,
4: जा चुका है वो। एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
3: अरे बाप रे,
4: 2014 की बात है एफटीआई के बाद। और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, यू नो, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहां हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
3: वाह।
4: और फिर हम दो साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं क्योंकि आप दो जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
3: कैसे निराशा का सामना किया?
4: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
3: कितना लंबा चला
4: ये चला? कुछ एक डेढ़ साल।
3: किसकी मदद मिली?
4: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी। ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा, पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहां पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी। मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से, उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था।
3: अपने ख्यालों में गुम
4: थे। अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे कि ये दूध उबल के गिर रहा है, और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
3: अरे बाप रे।
4: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं। आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन। हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब यू नो आई वाज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं और हम गाते भी अच्छा हैं, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है क्योंकि वो एक ही चीज कराते, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है। वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे। अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
3: बहुत बड़े सवाल थे।
4: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
3: मेरा दिमाग घूम गया।
4: हाँ। और फिर हम, आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है। तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है। बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही है तो फिर जल्दी नहीं चली जाए। तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना 1 साल। तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
3: क्योंकि ये ऐसे नहीं,
4: ये ऐसे बात नहीं करती है। और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे। मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी। उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती। एक साथ होता है तो ढाड़स बधा रहता है आपके पास। वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में। बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था।
3: गजब।
4: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड राइट ऑल्सो। और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
3: कैसे अपने आप को संभाला और इस 1 साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
4: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था। क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। तो थैंकफुली यू नो आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं। तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है।
3: यू नो हम तो इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद भी
4: राय मदद हमको ये अंदाजा नहीं था। हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास यू नो टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर, ये सब समझ ही नहीं था। हमको बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको, तो बस हम, दैट वॉज अ गुड डिसीजन।
3: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती
4: है। ये
3: दुनिया की सबसे प्यारी बात है,
4: सबसे प्यारी बात है। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं, उसी समाज का हिस्सा है। पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये।
3: बिल्कुल,
4: वो भी तो मर्द ही है ना।
3: बिल्कुल,
4: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है। पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द, जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा। आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद। बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते हैं, जाओ उड़ो। बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो। बचपन में हमारे पापा, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है, जैसे ये कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था। हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
3: और इसलिए आप संभल गए।
4: इसलिए हम संभल गए।
3: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
4: बिल्कुल,
3: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई
1: बिल्कुल पूरी तरह से
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है, जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया, और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है, क्योंकि ये जो 1 साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में, इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था, तो आई डिड इट। और 1 महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहां के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था, और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड था
1: यूपी है,
0: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था?
1: मध्य प्रदेश है, पर बिहार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता, और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली वहां कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है। मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहां पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है, मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं, पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में, तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहां पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम, और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, या बनी जई हो बनी के जोगिनियार हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए,
0: ओहो, ये बहुत बड़ा झटका था।
1: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है, उर्दू पोएट्री,
0: मनीष
1: जिसपे
0: गुप्ता
1: मनीष गुप्ता का,
0: का।
1: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल, आपकी याद आती रही रात में।
0: अच्छा, ओ हो, वो आपने किया था।
1: जी
0: देखिए, मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक हैं।
1: जी तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है YouTube पे वीडियो में है, और आज भी हमको
0: खूब चलता है वो।
1: खूब चलता है, हमको आज भी बहुत
0: ओरिजिनली
1: मैसेज
0: छाया
1: आता
0: जी
1: है।
0: ने गाया है
1: जी
0: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही हैं।
1: ओ कैसा ये सर्कल है,
0: हाँ
1: देखिए।
0: बिल्कुल।
1: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि YouTube का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है, और हमको फेसबुक पे, और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
0: और मैंने क्या समझा पता है,
1: हाँ
0: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने
1: जी
0: वो वीडियो बहुत देखा है।
1: अच्छा
0: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ कुछ
1: अच्छा
0: कविताएं पढ़ी हैं।
1: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
0: दो कैमरों से
1: दो कैमराज लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा, उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन,
0: हाँ,
1: उनको चाहिए थे लोकगीत,
0: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे,
1: ढूंढ
0: उन्होंने ये
1: रहे थे।
0: ऐलान किया था।
1: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन।
0: वो भी हमारे दोस्त।
1: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
0: क्या बात है। और वो खूब चला
1: खूब
0: और
1: चला,
0: पूरी दुनिया में धूम मचाई।
1: बहुत चला।
0: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज।
1: पार्किंग लॉट।
0: वो भी मजेदार है, उसमें तो आपने
1: अरे
0: पता नहीं क्या क्या गाया है,
1: हाँ उसमें तो
0: जब जो मर्जी आई है गाया है।
1: जब जो दिल में आया, और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
0: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली, ये बहुत अमेजिंग बात है। मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
1: ये दोनों पैरेलल ही शुरू हुआ।
0: पैरेलली शुरू हुआ और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि
1: हाँ
0: ये
1: ये
0: मतलब
1: हम
0: ये बहुत
1: भी
0: मजेदार है। मुझे ये
1: हाँ
0: आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूं,
1: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज
0: और
1: शुरू
0: वो
1: हुआ,
0: भी बहुत चली थी,
1: बहुत चला,
0: बहुत ज्यादा।
1: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, AR रहमान सुन ले हमको बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी,
0: और उन्होंने सुन ली,
1: और उन्होंने सुन ली।
0: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना
1: उन्होंने
0: था।
1: इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको,
0: अच्छा,
1: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
0: उनका भी
1: उनका भी जन्मदिन है,
0: ये भी इत्तेफाक है।
1: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
0: अरे बाप रे।
1: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे AR रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, AR रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि AR रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
0: सारे सुने होंगे,
1: और यू नो ए आर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
0: ये एक जरिया बना।
1: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और ए आर रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं।
0: वाह।
1: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा। ये जो
0: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
1: हाँ
0: कंफ्यूजन के साल।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए, आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी, लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है, और दिल के अंदर दम कोने में ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना ए आर रहमान के पास प्लीज।
0: वाह वाह।
1: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
0: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम,
1: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम।
0: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
1: तो ये 3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
0: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
1: ओहो कैसे बताएं हम हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
0: चेन्नई में, ए आर रहमान स्टूडियोज,
1: ए आर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका
0: बिल्कुल।
1: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में ए आर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और ए आर रहमान का एक गाना हो सोलो।
0: एग्जैक्टली ये बोला,
1: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये संभव हुआ।
1: ऐश्वर्य ने बोला भी कि यू नो ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो, तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर ए आर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे। आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा ए आर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
0: अरे गजब।
1: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: वाह वाह वाह वाह।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं,
1: जी
0: ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है,
1: जी
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये

0: क्यों है गाना, और ये कहाँ आता है, और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है। तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे, क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे, कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बहुत बड़ी
0: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था।
0: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये वो ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं ये लोग। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो,
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूं, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूं। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा।
1: बिल्कुल
0: ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
1: बिल्कुल
0: और
1: वो सुन के
0: इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं
0: आ
1: जो, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम है
0: कंप्लीट एल्बम है। यस,
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना। जिसने
1: अच्छा
0: गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
1: बिल्कुल,
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट,
1: उसको ये मौका दिया गया।
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है, रहमान
1: पर
0: सर
1: हमको तो आपकी
0: सो
1: आवाज में सुनना है।
0: किससे मिस

0: आए मस्कारा, अखियां लगाए रखना, किस्म सियारा लाए मस्कारा, लकियां निभाए रखना।
1: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने।
2: नहीं थे जी।
1: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
2: जी,
1: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
2: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको दस साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात

0: कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से,
1: क्या
0: ये
1: बात है।
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल।
0: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना
1: सोची नहीं
0: सपने
1: थी।
0: में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटिफुल दीपाली, गुड
1: वाह
0: वर्क।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देव लोक में लेके जाता है।
1: उनके
0: हम
1: लिए एक समाधि जैसा है।
0: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर, और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह
0: उसके
1: वाह।
0: अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम ए आर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम,
1: ओ हो।
0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने
1: क्या बात है, क्या
0: जी।
1: गया?
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है,

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ,
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा
1: एक
0: लगा।
1: ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मैं भी इसलिए शायद, वेरी गुड, एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है, और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, मछली के कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है, और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
0: असली रूह इनमें
1: असली
0: है।
1: रूह इनमें है। तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे, वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास, उस समय 500 व्यूज से 5,000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही
0: बिल्कुल
1: सारे
0: बिल्कुल
1: एहसास है,
0: बिल्कुल।
1: मुखड़ा तो रिपीट होता है,
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस था। क्या
1: तो
0: बात है,
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है,
1: जी
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है, और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है,
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये,
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्य की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी

0: आतंकी जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए?
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी, और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे, हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है, बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है, तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है, पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
0: मतलब बरसों बाद
1: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे, और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का, वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं? जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: रफी भक्त हैं।
0: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त एक किशोर भक्त।
1: हाँ, ये
0: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
1: करेक्ट, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है घर, ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
1: बहुत,
0: है ना, अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
1: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है, हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार है, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहां एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
0: वाह वाह वाह,
1: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
0: वाह,
1: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले, पापा मम्मी, पापा माँ, पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
0: बिल्कुल,
1: और पूर्णता से है,
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम, वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है, और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने, तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से, ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
0: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो
1: हाँ।

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज
0: गया।
1: में
0: ये
1: था ये
0: बहुत
1: गाना
0: चला था क्योंकि उस
1: जी
0: वक्त, बिल्कुल
1: जी
0: सुंदर गाना आर डी बर्मन।
1: जी
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी
1: ओह
0: धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो
1: जी
0: किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
1: जी जी
0: दूसरी किताब शिखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है
1: जी
0: भाषा के स्तर पे भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
1: जी
0: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
1: क्या बात है।
0: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल, और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उसमें लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर, तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है, इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेके, राजनीतिक पक्षों लेके बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैला आंचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो तीन वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेनजी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की तीथिका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए
1: जी,
0: और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा। तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुलती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की, अच्छी हिंदी कैसे सीखें पढ़ें समझें, ये बातें जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
0: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसरभाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है, और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सीइंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए کہ ہمیں رسول اللہ بھائی کی یہ ٹھمڑی سننی چاہیے
1: جی
0: ہمیں بڑے غلام علی خان کا یہ دادرا سننا

0: चाहिए या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे पढ़ते, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसलिए कि फलाने ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बन सकती है।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न झरे फूल से।

उनकी कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।

0: इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में कृष्णा सोबती को, 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्फा तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से तो बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का अस्सी, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गंभ है दरियाओ, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी। मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खासतौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा। इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है, मेरे से जो सीनियर थे मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हाँ मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस परीक्षा शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
2: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। तो उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता पे प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़े। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाड़कर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था, बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए, जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
0: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है। ये हैं उर्मिला शिरीष।
3: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं

0: हो और हमारे पाठ हो, वो हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुंच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मान रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता, नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठाकर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी उतनी ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
1: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी, शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत लिखे।

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दातापीठ, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितने अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग, कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बुनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दातापीर लोग पढ़ें, और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मानवीय कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उदास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं, और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता कृपिका की पढ़ी है, और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की, हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं, और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदयेश जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे, और हृदयेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे, और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है, और उन्हें ही चाहिए।
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दातापीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश बानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं।
1: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स, वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं, लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें, जरूर उससे गुजरें।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
3: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
1: जी,
3: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताजा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

12:42 और 55 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम बोझो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है 1978 में रिलीज हुई फिल्म अखियों के झरोखों से।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में, फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो वो इबारत हमने पोस्ट कर दी थी और देखते हैं कि आपने कौन कौन से शब्द चुने हैं, कौन कौन से गीतों की लिस्ट बनाकर भेजी है वहां पर, और हमारी लिस्ट से आज वो कितनी मिलती जुलती है। अगर वो फेहरिस्त हमारी लिस्ट से ना भी मिले तो भी आप अपने पसंद के गीत उन शब्दों से चुनकर लेकिन वहां लिख सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस इबारत को अभी तक नहीं पढ़ा है। इबारत कुछ इस तरह से है। वो दोनों पहली बार एक सफर में मिले थे। मुलाकात छोटी थी लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा बार बार याद आता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि जाने कैसे और कब एक अजनबी से दिल का इकरार हो गया। फिर मुलाकातें होने लगी। दोनों अक्सर हंसकर कहते, जब हम दूर होंगे ना तो ये गीत याद रखना। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता वो उसकी जिंदगी का वो मीत है जिसका इंतजार शायद बरसों से था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द कम पड़ गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ खूबसूरत पल देकर चले जाते हैं और हम बस तड़प कर उनका नाम ही ले पाते हैं। लेकिन उस प्यार की खूबसूरती यही थी कि उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। फिर खिड़की से आती हवा को महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, आने वाला पल जाने वाला है, तो जो पल मिला है उसे खोने का अफसोस क्यों। तो ये थी इबारत। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और मुझे इंतजार है आपके संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में ही गीत अभी आप सुन रहे थे, खानदान फिल्म से खयाम का संगीत था। इस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने। और अब संदेशों की बारी आती है। आपने बहुत से संदेश हम तक पहुंचा दिए हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि कभी कभी जिंदगी के सफर में कोई अजनबी यूं मिलता है कि छोटी सी मुलाकात भी दिल पर उम्र भर की छाप छोड़ जाती है। उनसे कहना बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा ही एहसास आज की इबारत में उनको पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ एहसास के साथ सजी है आज की इबारत। एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गीत उन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में आता है ये गीत या नहीं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज महफिल में अजनबी की मुलाकात और उसके बाद की संगीत में जुगलबंदी सुनने का बढ़िया आनंद मिलेगा, और इसे आनंद कहना भी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस खूबसूरत अनुभूति से लिखा गया है, प्रेम की यात्रा और स्मृति सौंदर्य का ये सुंदर रूपक है जिसमें राग भी

शामिल होंगे और प्रेम आत्मा का एक सुंदर ठहराव है जो जिंदगी के सफर में राह में मिले किसी अजनबी को आपकी जिंदगी का हम सफर बना देता है। वो चेहरा बार बार याद आने लगता है तो समझिए कि प्रेम का अंकुर फूट चुका है। इकरार होते ही मुलाकातों का सिलसिला प्रेम को परवान चढ़ाते हुए मंजिल की ओर हम सफर बनकर हमदम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें तारीखों में नहीं मिलती, बस दिल की किसी खामोश तह में ठहर जाती है। वो भी एक सफर था, कुछ पल साथ चले फिर रास्ते अपने अपने हो गए। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि मुलाकात मुलाकातें नहीं बन पाती और बस एक मुलाकात बन जाती है, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है वो बड़ी सारी मुलाकातों पर भारी पड़ जाती है, जिंदगी भर ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो हमसफर था या मेरी कोई खूबसूरत दुआ, जो मिला तो लगा जिंदगी मिल गई और बिछड़ा तो जाना कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ एहसास बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और चलिए, जब मुलाकात की बात हुई और इस तरह से सुंदर संदेश आए, क्यों ना आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे संदेश लिखे जाएं जहां एक ही मुलाकात काफी है जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो मुलाकात जरूरी नहीं कि प्रेमी के संग हो या फिर कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो मुलाकात किसी के साथ भी हो सकती है। एक ऐसी मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और फिर वो मुलाकात या उनसे मिलना दोबारा नहीं हुआ, इस तरह का कुछ अनुभव आप लिख भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में और हमारे साथी श्रोताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल और एसडी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुरीला सफर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के लंबे और अनजाने सफर में कई राहगीर मिलते हैं, पर कुछ अजनबी दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कभी किसी शांत मोड़ या सफर में जल्दबाजी में भी हुआ अगर छोटा सा संवाद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को रूह को सुकून पहुंचाता है। फिर वो इंसान दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्यार की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। जी हाँ, बिल्कुल।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात उन्हें याद आती है, उसका चेहरा आज तक याद आता है, बार बार याद आता है। और इस इबारत से मुलाकात शब्द पर ये जो पहला गीत हमने सुनवाया वो ही उन्होंने गेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो अजनबियों का आपस में टकराना, ये छोटी सी मुलाकात यादों में बस जाना, धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और लगा यही पल सबसे अनमोल है। इस रंग बिरंगी जिंदगी में मिलन के कुछ दिन जो आते हैं, लेकिन फिर बिछड़ना भी होता है, लेकिन वो सुनहरे पल हमेशा यादों में बस जाते हैं। बिल्कुल एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है, जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना, बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है, इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात, या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नज़रिए को बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारा, हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफ़ी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो 1 सप्ताह तक स्कूल आई, लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा। शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। 1 सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे, संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम हराई प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उभरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल हैं हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुँचाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नज़दीकियाँ हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है। आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई, जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहाँ उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे, मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बात हुई बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या हैं ये कितने सोच पाते हैं। किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं, कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नज़रें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही नज़रें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंध गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं, बिल्कुल गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं।

एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक

के पीछे खड़े हैं और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पर हूँ और मैं लाइन में ही खड़े रहूँगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज़्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए जहाँ से भी हमें सीखने को मिले, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहाँ पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

किशोर कुमार की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफ़र, सुरीला सफ़र तय किया अनुराधा के संग।

त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। नमस्कार। दीवाना, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले प्रेम और जुनून की तस्वीर उभरती है। किसी के प्रति ऐसी गहरी चाहत जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाए, उसे दीवानगी कहा जाता है। प्यार में डूबा व्यक्ति अपने प्रिय की एक झलक के लिए बेचैन रहता है और उसकी मुस्कान में अपनी खुशियां तलाशता है। दीवानगी केवल प्रेम तक सीमित नहीं होती, किसी सपने, कला, संगीत या अपने लक्ष्य के लिए भी इंसान दीवाना हो सकता है। दरअसल दीवानापन उस जुनून का नाम है जिसमें दिल किसी चीज को पाने या महसूस करने के लिए पूरी शिद्दत से धड़कता है।

दीवानगी में एक अजीब सी खूबसूरती होती है। जब इंसान किसी के प्यार में दीवाना होता है तो उसे हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। मौसम सुहाना हो या उदास, हर एहसास उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। कभी उसकी आवाज दिल को सुकून देती है तो कभी उसकी दूरी बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुराने गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं, बल्कि ऐसी भावनात्मक अवस्था भी है जहां दिल अपनी बात दिमाग से ज्यादा मानता है और प्रेम की अनुभूति जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है।

कई बार दीवानगी किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए होती है। कोई गायक संगीत का दीवाना होता है, कोई कलाकार अपनी कला का, तो कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून में दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दीवानगी इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े काम उन लोगों ने किए जिन्हें अपने सपनों पर असाधारण विश्वास था। प्रेम की दीवानगी हो या सफलता की, इसकी असली खूबसूरती तब है जब वो इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। शायद इसी एहसास को पुराने गीतों ने बार बार अपने अंदाज में आवाज दी है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
1: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
2: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
2: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
2: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स से नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
3: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग

0: 25% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इस शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
0: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
2: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
3: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
4: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञान रात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष

0: प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
1: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। नंदा ने साथ दिया, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

0: फुल पत्म ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी दोनों।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा SD बर्मन की तर्ज।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: इन देवियां फिल्म का नाम मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमति फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में, फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं, और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ, और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बेंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से। इंदिवर ने इसे लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्हार, पद्मावती कुम्हार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल निशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामनाहली बेंगलुरु से महमद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: यार गोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्स बाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं।

0: अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत है। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चली आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: अब फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
0: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
1: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
0: अरे गोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चले यहां से।
1: हाँ चलो।
0: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
0: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
0: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
1: हाँ चलो।
0: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
1: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
0: ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ।
1: हाँ।
0: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए, आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त तो काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी।
1: ओह
0: घर में

0: वो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं? सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या, सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
0: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान, इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
0: मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो?
1: श्रीमान, आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते? बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा और ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों, क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान, तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
1: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
0: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
1: हाँ,
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
1: अच्छा अच्छा,
0: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, फिर मिलेंगे। ये फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटाऊंगा, इतनी देर हो गई लेकिन इसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे, जरा पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूं।

0: ये मेरी बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार गुन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अभी ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर में यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
0: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
1: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, अब मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
0: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
1: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
0: अच्छा अच्छा।
1: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
0: साबुन खरीदने?
1: जी
0: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
1: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं?
0: हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई।
1: ओके,
0: वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
1: हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं अब साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
0: अजीब आदत है।
1: हाँ है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
0: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: वो कैसे?
1: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
0: अरे
1: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहां वो होटल था।
0: तो फिर आपने क्या किया?
1: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया।
0: ओह,
1: तब से मैं यूं ही भटक रहा हूं। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया हो, जिसका यहां ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
0: हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
1: हाँ,
0: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
1: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
0: वो कैसी मुश्किल?
1: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी। तब तक मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
0: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
1: क्या?
0: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
1: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है। इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है।
0: ओह,
1: दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
0: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
1: मिस्टर गोटी,
0: हाँ,
1: आप क्या सोचने लगे?
0: जी वो
1: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं। ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ
1: अच्छा
0: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
1: हाँ,
0: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
1: अच्छा?
0: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
1: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
0: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
1: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
0: हाँ,
1: लेकिन यहां तो मैं अपने ही देश में हूं। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
0: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
1: नहीं नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर गोटी,
0: हाँ हाँ कहिए कहिए।
1: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो।
0: हाँ हाँ, बताइए बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
1: क्या मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ 1-2 दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस बस इतने कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं बस।
0: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
1: मिस्टर गोटी, हाँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब। मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
1: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया इस भल मनसाहत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
0: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
1: जी,
0: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
1: कहानी
0: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं।
0: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था। मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
1: वो साबुन की टिकटिकिया हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ।
0: यहाँ इस जेब में नहीं है। अरे इसमें भी नहीं है। कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ हाँ,
1: वही देख रहा हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
0: खो गई। एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
1: जी
0: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
1: मैं मेरी बात
0: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखाधड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है। अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी जाता हूं।
2: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए।
0: साइमन साहब,
1: मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
0: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
0: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है।
1: गवाह?
0: ये देखिए, साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए, मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
1: वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
0: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
1: जैसा आप ठीक समझें।
0: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
0: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा, ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
1: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
0: अच्छा, अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
1: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
0: और देखिए अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया, चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप, फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं, कोई और ही साहब है। ओ, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था

0: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
1: लेकिन वो
0: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है, बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता ना करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
2: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक सावन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूँगा
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार विमल रॉय साहब को। हम विमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में विमल रॉय साहब।
2: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
2: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं
1: जी।
2: उनके साथ उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी।
2: बहुत
1: जी।
2: ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
2: रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं हम बहुत ही, इसमें मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी। जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे? और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी।
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
2: तो पिता और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी।
2: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
2: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय
1: जी।
2: जी
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी और उनका हाँ। एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम हाँ, जानना चाहेंगे।
2: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ। हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
1: जी। जी तो रिंकी जी आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
2: नहीं, पिताजी हमेशा पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
1: अच्छा।
2: और हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
1: जी।
2: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चले आई, मेरा तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
1: जी।
2: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
2: बहुत प्रभाव। हाँ,
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
2: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली। तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
1: बहुत एथिक्स थी,
2: एटीट्यूड। हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इन सब के बारे में, और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा,
2: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
1: जी।
2: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिताजी का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
1: जी।
2: हाँ, उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें सब सिगरेट निकोटीन का दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
1: जी।

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई, उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रहे होंगे?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से, हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसका जो फिल्म बनाया पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था, हाँ, उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ यहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी का बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहां से उनको निकाला गया था, तो वो भूल उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजेडी था, हाँ, तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था, वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे। तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
0: मन में रहा और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा
1: जी।
0: तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशंस कोई नहीं होते थे फिल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूँगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे, प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के
0: जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
1: जरूर, मैं तो बोलूंगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
0: जी,
1: इतना उसका प्रभाव था। हाँ, एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
0: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी,
0: और ये लोरी और बहुत, हाँ आप बताइए,
1: ये लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादर में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है, हाँ। ये तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ।
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी, मतलब
1: नहीं बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे, फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें,
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत है, और इतना यूनिक संगीत है, और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है जो
0: जी,
1: गीत तो पसंद है, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ये नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक करके ऊपर
0: जी,
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन विमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है
1: जी। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या विमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है, आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, 15 साल की थी, तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
0: जी,
1: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं, पारो का ये जो किया था
0: अभी नहीं था,
1: हाँ,
0: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा विमल रॉय साहब का मानना था,
1: कोई कर नहीं सकता था,
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: जी, लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के
1: लिए? लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो समझ जब ये है ना समस्या
0: जो व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
1: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है, आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत इम्प्रेस करता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी,
1: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले मधुबति किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थी ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
0: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे विमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
1: नहीं, पिताजी जो काम करते काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना
0: वो अलग था,
1: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
0: जी।
1: इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी के साथ शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
0: जी।
1: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
0: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
1: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
0: जी,
1: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था। तो पिताजी हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
0: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
1: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
0: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा, पिताजी का ये भी था कि हम लोग ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाई।
0: अच्छा,
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मैं, मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया, नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था, तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गुंथे हुए थे।
1: एकदम
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे और
1: फिल्में दुनिया में स्पेशली
0: सबसे बड़ी बात है कि फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना, पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे बिमल रॉय में, बिमल रॉय फिल्म का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, हाँ। वो उनका फिल्म का ये है,
0: लोगो
1: उस
0: है।
1: ये भी कोई सोचने लायक बात है ना
0: जी जी। जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के, लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको, सब रो रहे थे देख के, तो मुझे ये भी ये खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया है।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी की किरदार को जीवंत किया, और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी,
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो नूतन को साइन करने को गए, तो नूतन ने बोला दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला क्यों, क्या बात है
0: जी?
1: तो बोले हम प्रेग्नेंट हैं, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी, तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला बिमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी, तो वही हुआ बात
0: जी जी।
1: शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज शूटिंग बंदिनी
0: जी, और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
1: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
0: जी,
1: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था उस।
0: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए,
1: श्योर जरूर,
0: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है, बहुत ही अच्छा है। उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी
1: एस जी
0: बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी,
0: एस जी बर्मन, बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली हैं, और एस जी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरेरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा, हाँ, मुझे इस कहानी को,
1: उस कहानी
0: किताब को,
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, जिसका नाम था जरा संध, पेन नेम, हाँ, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरी

0: कलेक्शन था उसमें कल्लाने का स्टोरी पिताजी ने चूज किया
1: था। तो उस वक्त उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
0: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
1: अच्छा,
0: जैसे राज कपूर है ना, राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
1: जी। तो बंदेरी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था गुलजार साहब।
2: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदेरी मोरा गोरा अंगलेरा। अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी उस जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी का गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा अंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर बिमल रॉय प्रोडक्शंस। हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
1: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बंदनी के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस एक केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी का प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक,
1: बिकॉज
0: ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन,
1: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमति उसी हिसाब से बनाया गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं। आप कहें

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बातें।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबके
0: जी, हाँ जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ,
0: यू नो,
1: इतना उसका असर है, और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ।
0: हाँ,
1: ये तो मधुमती के साथ है। दो बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है
0: जी।
1: हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दो बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, तभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाई हैं।
1: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है NGO के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूँगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, DVD में है वो।
0: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
1: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती खास, मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
0: जी,
1: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैंने बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
0: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया की समक्ष गई लोगों के, खासतौर से महिलाओं का?
1: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
0: जी, हिंदी भाषाओं में।
1: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है।
0: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
1: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में, तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग।
0: अच्छा।
1: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना, मैं

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं, फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है ना, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को ये करूँ
0: जी। और उसमें आप लगी हुई हैं आज भी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले उनकी

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का पसंदीदा और दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। और आज का अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, आज के इस अंक में चलिए आपको बताते हैं कि अपने जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस ग्रह को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से न सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसके लिए आप पानी के संरक्षण, रिसाइकलिंग उत्पादों को खरीदने, वाहनों की बजाय साइकिलिंग या फिर पैदल चलना, अधिक पौधे लगाने आदि से शुरुआत कर सकते हैं। आइए इस अंक के माध्यम से हम आपको ऐसे 5 तरीके बताते हैं जिसके माध्यम से आप खुद को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पेड़ पौधे हमें न केवल ऑक्सीजन और फल प्रदान करते हैं, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और वन्य जीवों का आश्रय बनते हैं। यही नहीं, गर्मियों के दौरान घर को ठंडा और ताजा रखने के लिए इसके आसपास कुछ पौधे लगाएं। इससे आपका घर भी हरियाली से समृद्ध होगा। इसके अलावा स्वस्थ जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का उपभोग करने के लिए अपनी बालकनी या बगीचों में जड़ी बूटियां या सब्जियों के पौधे लगाएं। दूसरा, अपने डाइट में प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अपने डाइट में प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों को चुनें, जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हो। ये एक ही समय में आपको पोषण और ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। ये अत्यंत कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है। तीसरा, रिसाइकलिंग उत्पादों को कचरा न समझे। रिसाइकलिंग उत्पाद आपकी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। ये प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा का संरक्षण और आर्थिक लाभ देने में सक्षम है। आप अपनी बैटरी, कागज, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकल कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दे, उसे लेकर एक बार जरूर सोचे कि क्या इस वस्तु को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। अगर हाँ, तो उसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेजें। दोस्तों, चौथा तरीका, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ई वाहन या साइकिल का प्रयोग करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, जैसे वाहनों का इस्तेमाल करने वाले पेट्रोल या डीजल के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। दरअसल सांस लेने के लिए हवा को साफ रखना जरूरी है, जिसके लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं करें, ताकि स्वच्छ खुली हवा में सांस ली जा सके। दोस्तों, पांचवा और अंतिम उपाय, प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि का इस्तेमाल न करें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि गलत है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब प्लास्टिक को इकट्ठा करके इसका निपटान करने के लिए जलाया जाता है, तो उससे जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। इसलिए इसका उपयोग और इस्तेमाल आज से ही बिल्कुल कम कर दें या खत्म कर दें। वहीं दूसरों को भी इसका इस्तेमाल करने से मना करें। तो दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर चर्चा बस यहीं तक।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल

0: अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: दोस्तों आइए अब सुनते हैं ये वार्ता। विषय है भ्रष्टाचार उन्मूलन में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं हिमांशु सिंह।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह, मैं आप सबके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे देश का भविष्य तय करता है, क्योंकि आप सबने ध्यान दिया होगा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। हम सब इस देश का भविष्य हैं, क्योंकि हम सबको समझना चाहिए कि किसी भी देश का जो नींव होता है वो एक युवा ही होता है, और खास करके तब जब हमारे भारत जैसे देश में अधिकतर जनसंख्या युवाओं की है। आज आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो ये भ्रष्टाचार है यह बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है। गरीबों को अपना हक लेना हो उसमें तथा कुछ बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कामों में भी लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। हम सबको मिलकर इसका निवारण करना होगा, क्योंकि हम सब इस देश के युवा हैं, तो हमें ही निर्धारित करना होगा कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। आप जरा सोचिएगा कि आप किसी भी काम को कराने जा रहे होंगे, उसमें चाहे वो छोटा से छोटा हो, उसमें भी आपको कुछ न कुछ गलत तरीके का सहारा लेना होगा। जैसे आप कभी वाहन के साथ जाते होंगे, चालान कटता होगा, तो आप पूरी कोशिश करते होंगे कि हम चालान न दे करके घूस दे के काम निकाल लें। मगर दोस्तों यही तो हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि हम युवा हैं और हम ही नहीं समझ पा रहे कि हमें अपने देश के साथ क्या करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं हर काम को जल्दी कराने के लिए, कहीं रिश्वत देकर निकल जाएं, कहीं सिफारिश दे दें ताकि हमें नौकरी मिल जाए। मगर दोस्तों हमें इससे ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो दुनिया को हम समझा नहीं पाएंगे। आज हम सबको चाहिए कि अगर कहीं भी हमें ऐसा कुछ भी दिखाई देता हो जिसमें लगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जब तक खड़े नहीं होंगे आप अपने देशवासियों को समझा नहीं पाएंगे। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो देश कैसे जागरूक बनेगा। एक पढ़ा लिखा जागरूक युवा सरकारी योजनाओं को जानता रहे, समझता रहे, कानूनी प्रक्रियाओं को समझता रहे, तो ही वह दुनिया वालों को समझा सकता है। हमारे देश का शिक्षित होना भी एक बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी पता हों जिनसे हम इन खराब स्थितियों को रोक सकते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप देखेंगे तो हम अपने सोशल मीडिया का उपयोग करके एक समाज में जागरूकता फैला सकते हैं। जैसे अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तकनीकी सबूत इकट्ठा कर सकते हैं जिसका उपयोग करके हम उन्हें अच्छी सजा दिलवा सकते हैं। आप इन बातों पे जरूर विचार करिए कि आपके क्या कर्तव्य हैं देश के लिए। हमें चाहिए कि हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा हो उसे मिल करके सही करें, उसे मिल करके सुधारने का जिम्मा उठाएं। हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा संसाधन हमें दिया है जिसका नाम है RTI, सूचना का अधिकार। अगर हम इसका भी उपयोग करें तो हमारे देश में जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी कुछ गलत हो रहा है, या कहीं भी आपको देख के लगे कि कुछ इसमें गलत हुआ है, तो आप उसकी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह केवल हमारा कार्य या आपका कार्य नहीं है, पूरे देशवासियों को मिलकर इसमें साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने देश को एक सही रास्ते पर ला सकते हैं। भविष्य की यह जरूर परिकल्पना होगी जिसमें हमारा देश एक अच्छे युवा, अच्छे कलाकार, अच्छे प्रशासनिक लोगों से बना हो, क्योंकि आजकल जब तक युवा अच्छे स्तर पर नहीं जाएगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर युवा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ न बोले या भ्रष्टाचार में सहयोग करने लगे तो फिर आने वाले भविष्य का क्या होगा। श्रोताओं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, और कल नहीं आज से शुरू करनी पड़ेगी, और यह लड़ाई बहुत लंबी होगी। क्योंकि आप अगर कभी ध्यान देंगे तो आपने देखा होगा आपके आसपास हर एक चीज में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल या कहीं भी, इंजीनियरिंग से लेकर कि आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में भी देख लेंगे, वहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर दिखाई देगा। हम सबको ईमानदारी से इन चीजों का सामना करना होगा और इनसे लड़ना होगा। आप ईमानदार हैं तो आप दुनिया को भी ईमानदार बना सकते हैं, मगर आप खुद ही अगर ईमानदार नहीं होंगे दोस्तों तो दुनिया को आप क्या सिखाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे देश का युवा अच्छा बने, जागरूक बने और ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करे, तभी वह दूसरों को सलाह दे सकता है। बस हमारी यही कामना है कि हम सब मिलकर पूरी युवा पीढ़ी इस भारत को महान बनाने में योगदान दे। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार अपने मन में जरूर दोहराएं कि मैं खुद ईमानदार बनूंगा, दूसरों को जागरूक करूंगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। कभी भी भ्रष्टाचार को देख के न तो चुप रहें और ना ही स्वीकार करें, उसका खिलाफ करें, उसके खिलाफ बोलें, उसे रिकॉर्ड करें। अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि आपके पास सोशल मीडिया है तो आप उसे रिकॉर्ड करें और समाज तक पहुंचाएं, जिसके साथ वह रोका जा सकता है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम सब अपने अपने स्तर पर इस देश को सुधारने की कोशिश करें। अगर आप किसी स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में हैं या किसी छोटे बड़े पद पर भी हैं, तो आप कोशिश करें कि वहां पर समाज के साथ कोई भी गलत ना हो। कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई दे तो आप उसका डटकर सामना करें, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यह बदलाव आपको दिखता जाएगा। आप अपने आसपास किसी नए निर्माण कार्य में भी यह ध्यान दें कि अगर वहां पर कोई भी गलत कार्य हो रहा है या उसमें कहीं भी आपको भ्रष्टाचार जैसी कोई भी चीज दिख रही है तो उसका डटकर सामना करें, लोगों से प्रश्न पूछें। आपके पास ये हक है लोगों से जानने का, क्योंकि जितनी चीजें हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो, आपके देश के साथ आपके पूरे किसी भी इलाके में कोई भी बदलाव हो रहा है, कुछ नया बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पैसों से ही हो रहा है। तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा, जिससे आप ये तय कर सकें कि आप भी इस देश के भविष्य के भागीदारी हैं। जैसा आपका निर्माण होगा वैसा ही भविष्य का निर्माण होगा, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ लगभग हम जैसे युवाओं पर ही निर्भर है। हम चाहेंगे कि हमारे देश का युवा अग्रसर हो हर चीज को लेकर के, वह कोशिश करे कि दुनिया में कहीं भी, देश में कहीं भी या उसके इलाके में कहीं भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसे सामने लाने की पूरी कोशिश की जाए, जिससे हमारा समाज संतुलित हो, अच्छा हो और प्रॉपर रूप से एक वे में चल सके। इसी के साथ हमें केवल मन की स्वच्छता नहीं, हमें तन और हमारे समाज की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल पैसों का नहीं होता, भ्रष्टाचार कुछ कार्यों का भी होता है, मानसिकताओं का भी होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए। भ्रष्ट मानसिकता के साथ साथ भ्रष्ट कर्मचारी हो या कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, आपको उन पर विचार करना चाहिए, ताकि वह आपके हिसाब से आपके देश का निर्माण कर सके। हमारा देश केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबका है। हमें साथ मिलकर के उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि हमारा समाज एक मजबूत पिलर की तरह तैयार हो, ताकि हम अपने देश को भ्रष्टाचार के लिए तैयार कर सके, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ईमानदारी के साथ हमें खुद को अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए तैयार करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वयं तो ईमानदार बने ही, अपने समाज को भी ईमानदार बनाएं, जागरूक करें, उन्हें एक युवा की शक्ति को महसूस करने दें, क्योंकि आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां से ही इस पूरी समाज का निर्माण शुरू होता है। युवा जब भी खड़ा होता है तो वह एक नए आयाम को लिखता है। आप जब भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो पूरे समाज में युवाओं की एक अलग ही पहल रही है। युवा जब चाहा है इस देश की दशा दिशा सब कुछ बदल सकता है। साथियों, आप सब पूरी कोशिश करिए कि आप अपना तो विकास करिए ही, साथ में

0: ईमानदारी के साथ अपने समाज के लिए भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपना परिचय स्थापित कीजिए। कोशिश करिए कि हमारा देश स्वच्छ, साफ, सुंदर बने और भ्रष्टाचार की जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की जा सके। स्वयं ईमानदार बने, दूसरों को जागरूक करें और भ्रष्टाचार को अपनी शक्ति से चुनौती दें। न चुप रहें, न स्वीकार करें। देश में जहां भी भ्रष्टाचार हो उसका जिम्मेदारी से खत्म करने की पूरी कोशिश की जा सके। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम अपनी बातों को खत्म करें और हम आपसे यही कामना करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे देश को विकसित करने में सहयोग करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करने में आगे आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था भ्रष्टाचार उन्मूलन में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थे हिमांशु सिंह, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुर्क बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रूपए और 21 विजेताओं के लिए 11,100 रूपए का सांत्वना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर है 8737981010। तीसरा नंबर है 7007445358।

दोस्तों, आज के इस अंक में आइए अब चर्चा करते हैं भारत में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन 2026 के बारे में। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए भारत 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के नेता और आमंत्रित प्रतिनिधि एक साथ आ रहे हैं। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स के भीतर सहयोग को मजबूत करना और पारस्परिक महत्व के प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करना होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय से प्रेरित है, जो मानवता सर्वोपरि की दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने 1 जनवरी 2026 को अपनी चौथी अध्यक्षता ग्रहण की। यह वर्ष ब्रिक्स की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक भी है। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन यानी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बड़े आयोजन में ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेता और खास मेहमान एक मंच पर जुटे हैं। इस अहम बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका, ईरान व मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन सभी नेता वैश्विक विकास और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष ओपन सेशन में महामंथन कर रहे हैं। आज होने वाले इस ओपन सेशन का थीम रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, शेपिंग द फ्यूचर फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच नवाचार, आर्थिक लचीलेपन और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ब्रिक्स 2026 क्या है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।

मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच नवाचार, आर्थिक लचीलेपन और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ब्रिक्स 2026 क्या है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है रानी राजश्री की और प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार वर्मा।
1: हेलो, दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूँ रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्ते सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दें।
1: जी दिलजीत सिंह नाम है, ग्राम चमरोहा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं।
0: जी सर, और सर क्या करते हैं आप?
1: काम हमारा सिलाई का और चुनाई का भी है।
0: जी जी, तो सर जैसा कि अभी देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और ऐसे में लोग थोड़ा सा बीमार भी हो रहे हैं।
1: स्वास्थ्य हमारा भी कुछ ठीक नहीं है समय।
0: जी
1: थोड़ा बीमार तो है, काम तो करना पड़ेगा चलाने के लिए।
0: जी बिल्कुल सर, क्योंकि काम जो है, चाहे जो भी परिस्थिति आए, काम जो है वो एक जीवन का हिस्सा है। तो सर ऐसे में ख्याल कैसे रखते हैं अपना, अपने परिवार का, बच्चों का?
1: ख्याल तो यही है सर, खाना खाना चाहिए, सबसे दवाई भी लेनी चाहिए, जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, लापरवाही ना करें और खान पान का विशेष तौर पर ध्यान दें। बारिश के समय में बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
1: जी, जी, जी।
0: और रेडियो सर सुनते हैं?
1: जी रेडियो तो हम बचपन से आ रहे हैं, आकाशवाणी नियमित श्रोता हैं अभी तक। आपके चैनल की इस बार।
0: जी क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, और ये जुड़ाव आगे भी यूं ही चलता रहेगा ये सफर। तो सर आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: नितिन मुखर्जी
0: की आवाज़ में गाना है, दो जहां से डेली की प्यारी
1: आंख। बहुत ही खूबसूरत गीत है सर, थोड़ा नाम
0: लेना। बिल्कुल सर, नाम बताइए।
1: बीबी का नाम कवि, बेटी का नाम वैष्णवी, बेटे का नाम भाई सोमपा, जय परिवार।
0: ठीक है सर, तो हम आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं।

0: हेलो नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते सर, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: जी हेलो फरमाइश, साहू भगाना जिला हिसार से बलवान सिंह बोल रहे हैं जी।
1: जी सर, क्या करते हैं सर, अपने बारे में कुछ बताएं।
0: खेती करते हैं जी।
1: तो सर कितने वर्षों से खेती का कार्य आप कर रहे हैं?
0: ये 7-8 साल से।
1: 7-8 साल से। और इसके पहले क्या करते थे सर?
0: ये शुरू से ही चल रहा है।
1: अच्छा, शुरू से ही आप खेती के कार्य में लगे हुए हैं। तो सर बहुत बढ़िया है, ये तो प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव, ये लगाव चल रहा है साथ साथ। और सर रेडियो के प्रोग्राम्स आप सुनते हैं?
0: बहुत ज्यादा, बहुत पुराने श्रोता जी हम तो। बलवान सिंधु बिल्लू सिंधु पहले नहीं चल रहे थे, गाँव बगाना जिला हिसार से।
1: क्या बात है,
0: बीच में छोड़ दिया था, फिर लगाव हो गया।
1: तो अभी सर लगता है कि गानों के साथ आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा जी।
1: तो कैसे गाने आपको सुनना सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: पुराने गाने पसंद है।
1: अच्छा, तो ये जो रेडियो का सफर है ये साथ साथ चल रहा है, और खेती के कार्य जब आप करते होंगे तब भी रेडियो आप सुनते रहते होंगे?
0: हाँ जी, उनसे ही साथ में रेडियो रखते थे, जेब के अंदर भी, छोटे पॉकेट वाले नहीं थे।
1: जी जी,
0: पहले बहुत ज्यादा लगा होता
1: था। बिल्कुल, जहाँ चले वहीं साथ रेडियो भी। तो सर जैसा कि खेती आप कर रहे हैं,

0: हूँ, भगाना जिला ही साथ है।
1: क्या बात है,
0: बीच में छोड़ दिया था, फिर लगाव हो गया।
1: तो अभी सर लगता है कि गानों के साथ आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा जी।
1: तो कैसे गाने आपको सुनना सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: पुराने गाने पसंद है।
1: अच्छा, तो ये जो रेडियो का सफर है ये साथ साथ चल रहा है, और खेती के कार्य जब आप करते होंगे तब भी रेडियो आप सुनते रहते होंगे?
0: हाँ जी, सुनते हैं। साथ में रेडियो रखते थे, जेब के अंदर भी, छोटे पॉकेट वाले नहीं थे।
1: जी जी,
0: पहले बहुत ज्यादा लगा होता था।
1: बिल्कुल, जहाँ चले वहीं साथ रेडियो भी। तो सर जैसा कि खेती आप कर रहे हैं,

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी रानी राजश्री की और प्रस्तुत करता थे सचिन कुमार वर्मा।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब भोजपुरी में समाचार होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम शिवानी अरोरा। द्विदिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलता के साथ पूरा हो गई। यह दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनावल गई। सम्मेलन का आज दूसरा आखिरी दिन ने भागीदार देशन के मुख्य सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशन का भरोसा बढ़ल बा। वहां के कहले कि ब्रिक्स के अंदर विकसित समाधानन का लाभ के विकासशील देशन के जरूरत के मुताबिक ढालल आ उपलब्ध करावल जाए के चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में

0: की आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
1: प्रधानमंत्री बतबले की सहरन के बीचे बढ़िया तौर तरीका के साझा कैले का सुविधा बदे ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन कैल गैल बा।
0: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन समारोह में प्रतिभागी देशन के सहभागिता बदे आभार जतवले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का छठवां स्थापना दिवस समारोह में शामिल भइले। ये मौका पर वहां के संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट विस्तारित क्षमता का इमरजेंसी वार्ड अ ऑडियो कई को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का लोकार्पण कैले। वहां के संस्थान में कई गो पदनपन चयनित कार्मिकन के नियुक्ति पत्रों बटली। समारोह के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि 6 बरस से कम में समय में ई संस्थान चिकित्सा अचिकित्सा शिक्षा का बढ़िया केंद्र बनी के उभरल हो। वहां के कहले कि अंग प्रत्यारोपण यूनिट का शुरुआती एगो बढ़ चिकित्सा सुविधा स्थापित हुई। मुख्यमंत्री कहले कि चिकित्सा क्षेत्र के मजबूत बनावे बदे पछला 9 बरस में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजन का एगो नया श्रृंखला खड़ा पहल हो। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहले कि प्रदेश में मजबूत भयल चिकित्सा सेवा मेडिकल टूरिज्म के बढ़ावले का कार कहले हो। समारोह के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह आ संस्थान का निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह को संबोधित कहले। मुख्यमंत्री आजू रायबरेली के उच्चाहार में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में शामिल भइले। यह मौका पर वहां के कहले कि शिव भक्ति भारत का सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता का आधार हो। मुख्यमंत्री कहले कि पावन कथा से मिले वाला सकारात्मक ऊर्जा समाज और राष्ट्र दोनों के शक्ति देला। शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 बरिस पूरा भइले के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ले चलायल जाए वाला प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान का पुरहर तैयारी कैल जा रहल हो। यही क्रम में आज गोरखपुर में जिला का प्रभारी आ प्रदेश का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अधिकारी लोगों के साथ बैठक की गई के अभियान की कार्य योजना पर चर्चा कैले। वहां के अभियान के दौरान कई को विभाग के बीचे तालमेल बना के जरूरतमंद लोगों के कल्याणकारी योजनन का लाभ दियवले व निर्देशन दिहली। नीट यूजी 2026 के तहत प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस का राज्य कोटा के सिटी नेपल दाखिला बदे दूसरका फेरा का ऑनलाइन काउंसलिंग पहने से शुरू हुई। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय के ओरी से एकर समय सारणी जारी कैल दिहल गैल बा। पूरी प्रक्रिया 25 सितंबर ले पूरा कैल जाए। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से हुई। ई मैच भारतीय समय के हिसाब से राती 8 बजे से खेलल जाई। सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश के और श्रीलंका पाकिस्तान के हरवले रहल। प्रदेश के कई जिलों में रुकी रुकी के बरखा का सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग अगला 3 दिन ले प्रदेश के कई इलाकन में गरज चमकी के साथ बौछार पड़ने का अनुमान जतवले हो। वहीं बरखा आ बैराजन से पानी छोड़ने के नाते प्रदेश का कई गो नदी उफान पर है। फरुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा आ अयोध्या बाराबंकी और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रहे हैं। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
2: FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। श्रोताओं आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनू कुमार पुत्र दरोगा सिंह निवासी ग्राम दुमहान पोस्ट राजखड़ थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 19 मार्च 2015 से लापता हैं। उनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 14 वर्ष, लंबाई 4 फीट। हुलिया है इनका गेहुआ रंग, गोल चेहरा, एक हरा बदन और मंद बुद्धि के हैं। पहनावे में ये खाकी पैंट और नीला शर्ट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। एक और सूचना, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवानी केन पुत्री स्वर्गीय हरि किशन केन निवासी 8/395 लोनी गेट छोटा बाजार शाहदरा दिल्ली जो मुर्धवा खाड़ पाथर सोनभद्र से दिनांक 26 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 28 वर्ष, लंबाई 147 सेंटीमीटर। हुलिया गेहुआ रंग, गोल चेहरा, मजबूत जिस्म और दोहरी बदन। पहनावे में ये गुलाबी रंग का सूट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आइए आपको अब जानकारी दे दें हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा रात के 9:30 का। कुछ पुरानी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में समय होगा रात के 9:15 का।

फिल्म संगीत, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुनिए अगर रात 8:15 पर। अलावा इसके फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम सबरस हम आपके लिए लेकर के आएंगे रात शाम, माफ कीजिएगा श्रोताओं, शाम 7:31 पर। तो ये थी उन कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा जो हमारे इस सभा में प्रसारित किए जाएंगे।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नकड़ो भैया तो हूँ के राम राम हो, कह सुनाओ का हाल चाल है
2: भैया। हाल चाल का बात करत हैं तो देखा मौसम के हिसाब से जो हाल चाल हो के चाहिए वह बा कह के मतलब के देखा एक गांव घर में रहे वाला व्यक्ति खेती किसानी का भी काम करत बा, अपने जोन व्यवसाय बा सह व्यवसाय से उसे भी जुड़ल बा, तो भैया कभी देर सवेर तो हो ही जात बा जेकरे वजह से खांसी जुखाम और तमाम तरह के समस्या के सामना करे के पड़त बा। लेकिन एक बात ए पर हम कहब भैया, देखा स्वास्थ्य के प्राथमिकता हमन के खुद देवे के पड़ी।

0: समय से नाश्ता, समय से भोजन पानी अगर कर लिहल जाए तो ए तरह के जो समस्या बा सर्दी खांसी की समस्या, बुखार की समस्या, तो देखा ये कम से कम मतलब पकड़ी, और जब प्रतिरोधक शक्ता शक्ति शरीर में रही भैया ना, तो रोग बीमारी से लड़े की क्षमता ज़्यादा रही और रोग बीमारी न पकड़ी भैया।
1: एकदम सही बात कहत हो नखड़ू भैया, लेकिन करे का आदमी कभी कभी का होला ना कि जिसे असमय भैया पानी बरखा लगल बरखा है तब समझ ला के पंचायतीये में आवे के बाद खेती कियारी जाए के बाद रास्ते में कहीं बार रास्ते पड़े में आदमी तब भीज जाला। अब भीज जाला तब भैया जनते बा कि आजकल का जोन माने ई पानी बा ई ज्यादा नुकसानदायक बा। काहे से अभी तो पूर्वा नक्षत्र भैया चलत रहा, लेकिन आज से या 13 तारीख है आज से भैया उत्तरा नक्षत्र हो जाई। ई सब पानी भैया ये मौसम में जे भिगता बरसात में तो कहीं न कहीं ओकरे बदे ई नुकसानदायक ही होला।
0: बिल्कुल, और सही बात कहते हैं। देखा अपन पंच भाई लोग ये बात के जरूर समझत हैं और जोन भी सावधानी बा सावधानी बरती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम तो कहब कि भैया हमन जिसे हमन आपस में बातचीत करीला, एक दूसरे
1: हाँ
0: के बात समझे के प्रयास करीला, तो देखा भाषा का इमेन बहुत बड़ा महत्व होला, और जब अपने भाषा में बात होला, अपने भाषा में बातचीत होला, तो ओकर रंग रूप ओकर समझला के आसानी से समझे के जौन प्रवृत्ति रहला, वो जल्दी समझ में आवला।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलन भी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो नखड़ू भैया हो अगर अपने हृदय के दर्द के दूर करे के बाद तो अपने भाषा का ज्ञान होए के चाही। लेकिन भैया हो देखें हमार राष्ट्रभाषा जोन है वो हिंदी है। हिंदी में कई प्रकार के भैया बोली बाई। बोली अगर मजबूत हुई हैं तो जवन अपन में हिंदी बा अपने आप व्यवहार में आई असमृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, और एक चीज भैया देखा कि मिलला के क्षेत्र के हिसाब से देखल जाए तो चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश हो भैया,
1: हाँ हाँ
0: और तरह तरह का बोली भाषा भैया बोलल जाला, और उकरे वजह से जवन हो थोड़ा सा भिन्नता वाला, लेकिन एक रूपता भी ये बदेबा कि सब लोग हिंदी के स्वीकार करना, हिंदी में बात करे के प्रयास करना, समझे के प्रयास करना, और कोनो भी देश के कोने में चल जा भैया, हिंदी के लोग समझा ना, हिंदी में जवाब देवा ना, लेकिन कभी कभी देखा कैसा मिला भैया कुछ लोगन के एक दूसरे से ऊपर जाए के होड़ होला कि हमार भाषा सर्वश्रेष्ठ बा, उनकर भाषा थोड़ा सा हीन बा, इस तरह का भावना वाला। लेकिन इस पर हम यह कहब कि सबसे जौन हिंदी देश का जौन भाषा बा स्वीकार्यता बा, उकरे पीछे कारण यह बा कि लोग जौन हो हिंदी में ज्यादा हिंदी में रुचि लेवाना और हिंदी में समझे का प्रयास करना, बात करे का प्रयास करना, और अपने अपने भाषा का विकास जरूर हो के चाहिए, लेकिन दूसरे ऐसा ना है कि दूसरे भाषा का भैया विरोध हो, बल्कि अपने भाषा से ही अगर हमारे भाषा के सम्मान हुई तब तब निश्चित बात कि दूसर जोन भाषा बा ओहू के सम्मान हुई भैया।
1: ये भैया देखा कोनो भी दूसर भाषा सीखले का सीखले में जनले में शर्म का बात नहीं,
0: बिल्कुल
1: वो भी सम्मान का बात बा। सम्मान देखा हम लोगन का जब बढ़ी कि अगर हम लोगन अपने भाषा के भैया जानब समझब ओके पढ़ब तब ओके सम्मान देव। अगर अपने भाषा के सम्मान देवे हम लोग शुरू कर देव तो निश्चित बा कि अपने आप हम लोगन के अंदर ये भावना जागृत हुई कि अपने भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा के भी सम्मान हम लोगन के देवे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अब भैया हो भाषा बदे बोली सबसे महत्वपूर्ण बा। काहे से कि पहले हिंदी भैया 19वीं शताब्दी से खड़ी हिंदी का जो चलन बा वो चलल भैया, लेकिन ओकरे पहले जौन रहे भाषा के रूप में जौन स्थानीय बोली रहल भैया उहे रहल।
0: बिल्कुल
1: काहे से कि 13वीं 14वीं शताब्दी से ही राजस्थानी ब्रज भाषा, माने राजस्थान में

0: भी राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग होत रहल। आ देखवा भैया, अगर भक्ति काल से लेकर रीति काल, आधुनिक काल का जवन भैया हिंदी के लेखक रहना काव्य लिखलें खास तौर से, तो वो सब कवि लोग या तो ब्रज भाषा का प्रयोग कैलें, या भैया राजस्थानी भाषा का प्रयोग कैलें, या कहीं कहीं भैया बुंदेली, मैथिली, मगही, कभी भोजपुरी का भी प्रयोग हिंदी में अक्सर देखे में आवला। लेकिन ब्रज भाषा सबसे महत्वपूर्ण रहल। अब ब्रज भाषा का प्रधानता रहल। आ देखें भक्ति काल में देखे में आयल कि महाकवि तुलसीदास जी जौन अपन सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध महाग्रंथ भैया
1: अवधे भाषा में भैया।
0: महाकाव्य जौन रहल वो पूरे विश्व में चर्चित बा। आ जितना भी साधु संत माँ अगर कोनो उदाहरण उनके रखे के बा भैया, तो रामचरित मानस से ही उठाए कर रखाना। तो इतना लोकप्रिय भइले का कारण का बा
1: यह बाकी
0: रामचरित
1: भैया
0: मानस के, कि वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ
1: समझ
0: सका रहा।
1: सकल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो देखा ये प्रभाव काहे बदे इतना प्रचलित भल, बोली के पाई का। अगर बोली से कौनो भी भाषा जुड़ी तो निश्चित बा के वो प्रसिद्धि प्राप्त
1: प्राप्त
0: करी।
1: बिल्कुल
0: अब भाषा हर समय सरल, सुगम्य और व्यवहारिक होए के चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उनमें गतिशीलता रहे के चाहिए। अगर मैंने एक उदाहरण नखड़ू भैया व्यवहारिकता का बात हम लोगन करीला, तो थोड़ा सा अगर हम लोगन आचार्य केशव दास के पढ़ लही, आचार्य केशव दास भी रामचरित मानस नियर ही रामचंद्रिका लिखलेन,
1: अच्छा।
0: लेकिन रामचंद्रिका के इतना प्रसिद्धि नहीं मिलल, रामचरित मानस के काहे मिलल। अगर देखा हमके ख्यात प्राप्ति करे के बाद समाज में एक अस्थायित्व प्राप्त करे के बाद, तो हमके भैया जौन अपन लोक भाषा बा
1: उससे जुड़े पड़े
0: ओसे जुड़े के पड़ी, वो बोली से जुड़े के पड़ी। लोक भाषा और बोली में अपने आप आकर्षण होला। और नखड़ू भैया हम तो उसे बताए दही कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी रामचरित मानस पढ़ लेला, और ओके वो रामचरित मानस याद बा। ओकर कारण यह बा कि वो सरल सुगम्य बा।
1: बिल्कुल। और लोक भाषा के बात आप करत हैं तो भैया देखा आज हमन के कार्यक्रम में भी चूंकि आज इतवार का दिन है
0: बिल्कुल
1: तो काव्य पाठ सुनल जाला लोक भाषा काव्य पाठ। देखा ईश्वर विरागी कवि हैं और अरुण कुमार तिवारी कवि दोनों लोग सुनावल चाहते हैं काव्य पाठ तो हम तो बिना देर के लिए सुनल जाए।
0: सुना ले। पंच भैया लोग देखें आज हम लोग अपने पंचायती में जुटल है। देखें आज बहुत बढ़िया गीतकार ईश्वर बैरागी जी हम लोगन के बीच में हवा, और साथे साथे अरुण कुमार तिवारी जी भी आज अपने पंचायती में हमारे साथ जुटल हवा। कवि लोग आज हम लोगन के बीच में हवा, उनके सुनल जाए। काहे से कि देखें प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छितिजल नभ पर डाल हिडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के त्वेष प्यारे भारत देश। त सबसे पहले अपने देश का गुणगान करे बदे ईश्वर बिरागी जी के।
2: देश के लिए चार पंक्तियां कि हमारा देश किस प्रकार से है। झील के गांव का महामहा

0: दिल कश हसी ये हमारा वतन,
1: वाह क्या बात,
0: कितना
1: वाह
0: दिल कश हसी ये हमारा वतन। और चार पंक्तियां देश के लिए पुनः
1: स्वागत, वाह
0: समर्पित हैं। थाम लेंगे वक्त को चलने न देंगे,
1: क्या बात, वाह
0: क्रूरता के हाथ हम बढ़ने न देंगे। जब

0: चुकने न देंगे। और वर्तमान में चार पंक्तियां, वर्तमान की परिस्थिति हमारे देश में जो है, बस्तियां आग घर में लगाने लगी,
1: क्या बात बा,
0: उंगली

0: राने लगी।
1: वाह वाह।
0: आहटे द्वार की अब डराने लगी। और चार पंक्तियां मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए।
1: स्वागत।
0: स्वप्न को नित नयन में उगाते चले,
1: वाह,
0: प्यार के बोल अधर पर सजाते चले। हम घृणा द्वेष ईर्ष्या कपट आचरण दिल से अपने हमें शा मिटाते चले। दिल से अपने हमें शा मिटाते चले।
1: देखें पंच भैया लोग, ई आप रनाहा ईश्वर बिरागी जी कितना बढ़िया संदेश हम लोगन के अपने गीत के माध्यम से देलें। अब हम अगले क्रम में बढ़त है। हमारे साथे अरुण कुमार तिवारी जी हवा, आपसे भी हम लोगन कुछ रचना सुन लेवल जाए।
2: एक

0: उतारिए,
1: क्या बात
0: भारती की आरती उतारिए,
1: क्या बात,
0: भातृभाव मर्म ही विशेष हो,
1: बहुत
0: एक

0: हम कथी दूसरे क्रम में हम लोगन ईश्वर बिरागी जी के सुनल जाए।
1: देखिए, अपने देश की जो वर्तमान स्थिति है, इस गीत के माध्यम से मैं उसे चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ।
0: स्वागत।
1: हाँ,

हाथ मर घट लिए हैं थके गांव घर, नई नग्न संस्कृति।

0: अरुण कुमार तिवारी जी और ईश्वर बिरागी भैया आज अपने पंचायत में जुटना और आप लोगन के इतना बढ़िया कविता पाठ सुनौलेन, एकरे बदे आप लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किधर है
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट?
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: आरबीआई कहता है
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: मुने भैया।
0: हाँ भैया।
5: भैया देखा बड़ी बढ़िया काव्य पाठ आप सुनो ना, ईश्वर विरागी अरुण कुमार तिवारी भैया रहना। और देखा जिसे आप कहना ना बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, तो जब अपने भाषा में जब कोई चीज कोई सुनावला भैया तो बड़ी रुचिकर लगला और एक जो रस रहला भैया भाषा में वो एक अनूठा रहला, और जब अपने भाषा में रहला तो अपनापन भी भैया झलकला उमे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: बहुत अच्छा भैया सुनो ना। और देखा हम लोग चर्चा भी करत रही कि आज जो समय बा भैया मोबाइल इंटरनेट का युग बा, और आज के डिजिटल युग में भी देखा हिंदी का महत्व भैया बढ़ते जात बा। आज मोबाइल में देखा हिंदी में संदेश लिखल जात बा, हिंदी में जानकारी खोजब तो तुरंत भैया डिजिटल माध्यम से वो सामग्री तैयार हो जाये। सोशल मीडिया पर इंटरनेट हिंदी का प्रयोग बदे नया अवसर पैदा कर दिले बा, तो एक माध्यम बा जोन सकारात्मक उपयोग लोग कह के हिंदी भाषा के प्रति अपन रुचि दिखावत हैं भैया।
0: बिल्कुल एकदम सही बात कहत हुआ, लेकिन देखा बात बत कही न हुई अपने कार्यक्रम में देखा राम वृक्ष और उनकर संघाती लोगों का गावल भैया एक डोमकच भी हम लोग शामिल कैले है जा। भादों का महीना बा, भादों के महीना में ही कर्म का भैया पूजा होल कर्मा का, तो ये अवसर पर हम तो कहते हैं कि बिना देर के लिए एक डोमकच सुनल
5: सुनल जाए भैया।

0: मुने भैया।
1: हाँ भैया, देखा इरना राम वृक्ष और उनकर संघाती लोगन आ जौन डोमकच गीत सुनौलेन भैया ना, एक गीत के माध्यम से जौन उनकर माने एक व्यथा रहल आदमी के अस्तित्व का, वो बात इतना बढ़िया तरीके से गीत के माध्यम से कह गई ना हो कि जौन माने सुनले के बाद हम लोगन भी सोचे बदे मजबूर बाई कि ये संसार के जब कोनो युवा आदमी बिया छोड़
0: बिल्कुल
1: कर चल जाला
0: बिल्कुल, कितना दुख
1: तो
0: का घड़ी रहा भैया।
1: हाँ
0: और
1: तक
0: यही लोक परंपरा के जोन एक मिठास बा अपने डोमकच गीत में रहा भैया। और ऐसे लोकगीत जोन बाया ये हमारे संस्कृत का अनमोल धरोहर है भैया,
1: बिल्कुल
0: जोन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परंपरा भावना और सामाजिक जीवन के भैया संजो के रखा ना। तो हम सबका भी एक दायित्व बनाला कि अपने जोनी लोक भाषा लोकगीत बा लोक कला बाई ओके सहेज के रखी, ताकि आवे वाले जोन पीढ़ी बाई उनके भैया ये सुने के और देखे के मिल सके भैया।
1: बिल्कुल भैया, लेकिन देखें उनकर अभिरुचि जौन बा शुरू से ही हम लोगन के ओ तरफ ले जाए का प्रयास करे के चाहिए कि वो अपने लोक संस्कृति से भी जुड़ाएं। काहे
0: बिल्कुल
1: से कि बचवा लोगन आज का जौन आधुनिक परिवेश बा आधुनिक वातावरण बा वो परिवेश में उनकर उड़ान माने बहुत अधिक बा,
0: बिल्कुल
1: उनके वास्तविक चीज समझावे का प्रयास हम लोगन के करे के चाहिए कि देखा अगर भैया हो आसमान में कितनो उड़बा लेकिन जौन अपन एक पैर बा वो हर समय धरती पर रहे के चाहिए, ऐसे कि भैया हो अगर ऊपर से गिरबा ते ही धरती पर आईबा। आ ई कोरोना नखड़ू भैया हम लोगन के एक सीख दे के गयल कि जे घर द्वार से एकदम नाता तोड़ दिले रहल, कभी माई बाबू का खोजे खबर नहीं ले लेस, लेकिन कोरोना आयल तो भैया वो जब वहां से
0: वो
1: निर्वासित
0: घर
1: भल
0: और गांव याद आएगा
1: तो
0: भैया,
1: ओके गांव अपन याद आयल।
0: हमेशा ये बात के याद रखे के पड़ी भैया हमन के जो सही बात आप याद देना कि आज के जो पीढ़ी बा वो एकल रहे में ज्यादा रुचि उकी लेवत बा,
1: बिल्कुल
0: और एक पतंग के तरह जैसे जीवन बा भैया। हम तो कहब कि पतंग अगर डोर से बंधल बा तब वो उड़ान ले पावत बा, अगर
1: बिल्कुल
0: डोर कट गेल भैया मतलब परिवार से अगर वो बिछड़ गेल तो समझ ले ओकर फिर उड़ान वहीं पे खत्म हो जाए,
1: बिल्कुल
0: कहाँ
1: भैया,
0: भटक के चल जाए कहीं पता नहीं।
1: तो ऐसे भैया डोर बनाए कर रखा, प्रेम का डोर सबसे बड़ी डोर हो
0: बिल्कुल
1: आ वो
0: बिल्कुल
1: डोर से जे बधल वह ये संसार में भैया हम तो कहिला के मोक्ष के प्राप्त कैलेस। अब
0: बिल्कुल
1: देखा धीरे धीरे अपने कार्यक्रम का समय हो गल, अब हम लोगन के चले के चाहिए तो सब पंचन
0: चनके
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: fiecare e născut.
1: Bachwa bolo jai hind,
2: bachwa bolo jai hind, bachwa bolo jai hind. भैया देखा बचवा लोग जुटल बाया और बहुत खुश बाया, प्रसन्न बाया, कहे से देखा आज छुट्टी का दिन बा भैया और समय उनके मिलल के मतलब जौन भी चाहत हैं खेले बदे कूदे बदे या जौन भी मित्र के साथ मिलल चाहत हैं तो उनके पर्याप्त आज समय रहल है भैया।
3: बिल्कुल
2: ये बदे बचवा लोग बहुत खुश बाया और देखा भैया हर बचवन के मन में कुछ न कुछ होला, कोई सवाल, कोई सपना, कोई परेशानी, कोई नई बात या कोई विचार होला।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन कई बार बचवा लोगन अपन बात कहे में झिझकना और यही बदे जरूरी बा कि घर, स्कूल और समाज में बचवन के अपन बात बिना डर और झिझक के कहे के अवसर मिले के चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात कहत हो नखड़ू भैया। चला सबसे पहले बचवन से ही जान लेवल जाए कि ऊ एकरे बारे में का सोचा ना, उनकर का सोच बा। अच्छा ई बतावा बचवा लोग कि आपका आपन बात कहे में बढ़िया लगा ला?
4: जी हाँ, जब मेरे माता पिता और शिक्षक मेरी बात ध्यान से सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरी बात महत्वपूर्ण है।
2: बहुत अच्छी बात। और बसवा लोगन देखा का कभी ऐसन भयल बा जब आप कुछ कहल चाहत हो और कह न पोले हो?
4: जी हाँ, कभी कभी लगता है कि लोग मेरी बात पर हंसेंगे या मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं चुप हो जाता।
3: यह तब बात है भैया की बचवा लोगन के ऐसन माहौल देवे के चाहिए जहाँ की आपन बात कह सके और उनकर कौनो भी केहू कभी मजाक न उड़ावे।
2: बिल्कुल भैया, बचवन का बात सुनने से केवल उनकर इच्छा ही पूरा नहीं हुआ बल्कि जब हम बचपन के ध्यान से सुनीला तो हमें उनकर सोच, भावना और समस्या समझे का अवसर मिला ला।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहत हो। कभी बचवा पढ़ाई के लेकर परेशान होना तो कभी का होला कि दोस्ती के लेकर परेशान हो जाना, कभी कोनो गलती कह देना तो ओकर डर उनके लगला सतावे। अगर वो खुल के बात कहीं भी माने बड़ लोगन से समय पर
2: बताए दी हैं
3: तो कहीं न कहीं उनकर मदद हो सकल है, उसे उनके लाभ मिल सकल।
2: सही बात बा भैया, बचपन के बोले के अवसर मिलने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाला, उस सवाल पूछना, आपन राय रखना और समस्या का समाधान खोजे का कोशिश कर भी सीखना भैया।
3: बिल्कुल सही बात कहत हो नखड़ू भैया। घरे में माता पिता जौन होना तो माता पिता बचवन के सबसे करीब रहना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: आ रहे बदे माने करीब रहे बदे एक ऐसा वातावरण उनके होए के चाहिए, अपने बचवा लोगन के हम लोगन के प्रदान करे के चाहिए कि वो अपन बात आसानी से कह सकें। माता पिता बचवा लोगन से पूछ सकें कि आज स्कूल में का भयल, तोहके आज कौनो बात से खुशी भइल कि कौनो ऐसन बात बा जौने से तू परेशान बाया। और सबसे जरूरी बात ई बा कि बचवन का बात बीच में काटे बिना पूरा हम लोगन के सुने का प्रयास करे के चाहिए।
4: अगर मैं कोई गलती कर दूं तो क्या मुझे अपनी बात बतानी चाहिए?
2: बिल्कुल बचवा लोग, गलती होइले पर सच बताई अच्छी आदत है। बड़न के

0: पहले बचपन का पूरा बात सुने के चाही और फिर समझावे के चाही कि गलती के कैसे सुधारल जा सकला।
1: बिल्कुल सही बात कहते हो नखड़ू भैया। जौन भी बचवा लोगन अगर गलती करी हैं तो उनके सुधार का मौका देवे के चाहिए, उनके समझावे का प्रयास करे के चाहिए। आ कभी भी बचवा लोगन के नीचा न दिखावे के चाहिए
0: उनका हमेशा
1: या
0: मनोबल उत्साह बढ़ाए कर रखे के चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: नखड़ो भैया,
0: हाँ मुन्ने भैया,
1: देखा संदेश भी हम लोगन सुन ली, लेकिन अब अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा कि अपने बचवा लोगन बदे काज जानकारी हम लोगन ले कर आल भाई आज अपने कार्यक्रम में। तो देखा बच्चों के सर्वांगीण विकास में रंगमंच शिक्षण का योगदान, मधुरिमा तरफदार जौन रंगमंच कलाकार हैं उनसे जगत नारायण भैया की बातचीत बा। एक साथ साथ बचवा लोगन के मुख से भी कुछ जरूर सुनल जाय, लेकिन पहले भैया हम ई कहब कि जवन बचवा के सर्वांगीण विकास में रंगमंच शिक्षण के योगदान बा, ई बड़ी अच्छी जानकारी बा मधुरिमा तरफदार का, तो सुन लो।
4: श्रोताओं, अक्सर हम लोग सुना करते हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे ही आपके बीच में आज मधुरिमा तरफदार जी हैं, आपसे मुलाकात हो रही है बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में। आप रंग मंच के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम करती हैं, कितना ये कारगर चीज़ें हैं इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। मधुरिमा जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रंग मंच के माध्यम से आप जो है कि शिक्षा दे रही हैं बच्चों को, ये कहाँ से आपके मन में ऐसा जगा कि हमको इस प्रकार काम करना चाहिए? इससे पहले आपका क्या भूमिका रहा है, कैसे आपने सीखा है इसको?
5: मैंने नाटक को सीखा है अपने घर से
4: जी।
5: मेरे घर में ही सारे रिहर्सल्स होते थे। मेरे नाना जो है वो जात्रा आर्टिस्ट थे और मैंने घर पे ही सब सारे रिहर्सल्स होते हुए देखे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मैं किसी की प्रॉक्सी करती गई और कोई बाजा बजाती गई। और उसके बाद मैं जब ऑनर्स के टाइम मैं कोलकाता आई और नांदीकर में हम लोग काम करने लगे। उस टाइम नांदीकर में एक 6 महीने का वर्कशॉप होता था
4: जी,
5: तो उसमें मैंने भागीदारी लिया।
4: कौन कौन से बाजा बजा लेती हैं?
5: अच्छा, बाजा तो अभी मैंने ट्रेनिंग के तौर पे मैंने नहीं सीखा है, पर मैं बजा लेती हूँ
4: जी जी।
5: हाँ, मतलब मेरे रिदम ताल सब सही है। और मेरी उसके बाद नांदीकर के ट्रेनिंग के बाद मैं नांदीकर में काम करने लगी और दूसरे जगह पे प्रोडक्शंस में काम करने लगी। तो 2019-20 के दौरान
4: जी
5: मैं प्रसन्ना सर के पास गई, जो चरखा के फाउंडर है प्रसन्ना, वो हमारे थिएटर के पायनियर भी है
4: जी।
5: तो उनके पास मैं मैसूर में गई और उनके वहाँ पर कुछ दिन रह के काम करने के बाद मुझे NSD रेपेट्री में मिला 2022 में
4: जी।
5: और 2022 के बाद से मैं 25 तक वहाँ पर काम किया मैंने और लगभग सारे नाटकों में मैं प्रिंसिपल एक्टर रही हूँ। कुछ नाटकों में मैं सिंगल कास्ट रही हूँ, जो एक नॉन NSDN को के लिए बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पर
4: जी, जी, जी।
5: तो उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट इनाफ, मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, जो एक सैलरी स्ट्रक्चर के बाहर भी जाके और कुछ कर सकती हूँ। तो जिसकी शुरुआत हमारे देश के उन बच्चों से होती है जिनके पास एक्सपोजर नहीं है कला की
4: जी।
5: जैसे मेरे पास वो एक्सपोजर पहले से ही था, तो उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ। और जिनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, मैं कोशिश करूँगी आगे भी जाके उन बच्चों के पास पहुँचना।
4: अच्छा, इसमें किन किन बातों को ध्यान में दिया जाए कि इस क्षेत्र में बच्चे जो सुन रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं शुरुआती दौर से जी?
5: शुरुआती तौर से जैसे हमारे देश के जो गांधी आश्रम है
4: जी,
5: जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रही है है ना, कि शिक्षा पे, पानी पे ऑलरेडी वहाँ पर काम हो रहे, तो हमारे लिए ये आसान है कि हम वहाँ पर जाके अगर काम कर पाए
0: जी,
5: या ट्राइबल एरियाज में जाके काम कर पाए, जो कि हो सकता है कि शुरू शुरू में मुश्किल होगी हमारे लिए, पर अगर हम वो बैरियर जो है अपना अपना कंफर्ट जो है वो तोड़ के आगे जा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि लाइव आर्ट फॉर्म के लिए, थिएटर के लिए वो आने वाले दिन में और अच्छा टाइम आएगा
4: जी। तो कब से जुड़ी हैं आप आश्रम से?
5: मैं आश्रम से तो मैं सुन रही हूँ आश्रम के बारे में 2022 से
4: जी,
5: और 2025 में हम लोग एक थिएटर प्रोडक्शन बनाने वाले थे प्रसन्ना सर के साथ ही, तो तब सर यहाँ पर थे वनवासी में, तब सर के साथ मैं फ़ोन पे बात करती थी और रोज़ सुनती थी। उसके बाद मैं अजहर हम लोग बेंगलोर में मिले, तब भी मैंने सुना, और ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आ पहुँच पाई, और मैं मतलब इस संस्था के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे काम करने का मौका दिया जा रहा है।
4: जी जी, अच्छा हाँ। इसमें चूंकि यहाँ पर तो बहुत सारे काम होते हैं, सर्वांगीण विकास के क्रम में यदि हम लोग बातचीत करें तो कौन कौन से ऐसे काम दिख रहे हैं जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को चाहे बच्चों को इससे जुड़ना चाहिए जिससे कि उनको विकास हो सके?
5: पहली बात तो है शिक्षा। तो यहाँ पर जब मैं आई और मैंने देखा कि इतने बच्चे आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अभी भी चांस है, हम क्यों ना हम इसको आगे लेके जाए, हमारा काम है ये इसको आगे लेके जाना।
4: जी बहुत, चूंकि बच्चों की स्थिति ऐसी होती है, अपने अंचल की बात भी करें, ये जो आश्रम है आपके मेवरपुर के दुधी और जो भी बभनी इत्यादि जो क्षेत्र हैं, ब्लॉक हैं, इसमें ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं बहुत दबू किस्म के होते हैं, और आप जो है कि ये रंगमंच के माध्यम से शिक्षा देना चाहती हैं, तो ये उनको उभारने के लिए कितना कारगर समझ में आता है?
5: हम उनको उभारने के लिए ही काम करते हैं, हम सिर्फ जो मंच पे बहुत अच्छा दिखे, चार तालियां मिल जाए, उसके लिए काम नहीं करते हैं
4: जी।
5: हम उसी के मतलब हमारे रूट कॉज वही होता है कि बच्चों को वो बस अपने इनहिबिशंस को भूल जाए, उनके दिमागी जो सोसाइटी उनको सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे चुपचाप रहना है, बोलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, डर के रहना है, उसी डर को हम रंगमंच खत्म कर देती है
4: जी, जी, जी।
5: उस डर के उस पार जो है रंगमंच शुरू होता है, आप जब स्टेज पे रहते हो तब आपको डर नहीं होता है।
4: तो क्या लगता है आपसे बच्चे जुड़ रहे हैं?
5: बिल्कुल जुड़ रहे हैं, और आगे और मुझे लगता है कि जैसे अजहर है जो मेरे कोलैबोरेटर है, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम करते हुए आए हैं, तो मैंने उनका काम देखा है
4: जी।
5: तो ऐसे और सारे लोग जुड़ जाएंगे तो बच्चे भी जुड़ेंगे।
4: तो इसके माध्यम से क्या सिखाती हैं बच्चों को?
5: पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनके जो भी इनहिबिशंस है
4: जी,
5: उसको हटाना है, जो भी उनको उनके अंदर डर है उस चीज़ को हटाना है
4: जी।
5: उनको अगर बोलने से डर लगता है, अपने भावनाओं को, अपने प्रश्न को पूछने से डर लगता है, जैसे कि अगर मैं बोल दूंगी या बोल दूंगा तो सामने वाला हंसेगा मेरे ऊपर या वो मेरा मजाक उड़ाएगा, उस डर को भगा देता है
4: जी, जी।
5: उसी के ऊपर हमारी प्राथमिक काम उसी के ऊपर होता है।
4: बिल्कुल
5: हाँ, के लोग आपके ऊपर हंसे कोई बात नहीं।
4: तो कुछ सफलता हासिल समझ में आती है क्या?
5: अभी देखिए ये एक दिन में चुटकी में होने वाली बात है नहीं।
4: हाँ, हाँ, हाँ।
5: वो मैं भी जानती हूँ,
4: जैसे शुरू में जैसे बच्चे बैठे
5: हाँ,
4: और धीरे धीरे उनसे जुड़ाव होते हो गया
5: हाँ,
4: आपस में बातचीत चलते हुए, तो हमको लगता है कि कुछ ही क्षण में
5: हाँ,
4: उसमें जो पहले दबूपना था उसके सापेक्ष कुछ परिवर्तन दिखाई देता होगा
5: हाँ,
4: आपसे बात करने लगे होंगे
5: हाँ,
4: आपसे जो है कि कुछ जवाब तलब करने लगते
5: हाँ,
4: होंगे
5: हाँ, हाँ।
4: तो चूंकि इसमें एक शिक्षक भी कहा जा सकता
5: हाँ,
4: है
5: हाँ।
4: और बहुत ऐसे शिक्षा देने वाले लोग ये भी करते हैं कि बच्चों को दबा देना, डांट देना
5: हाँ।
4: और उससे जिसके वजह से वो दब जाता है
5: हाँ।
4: तो ऐसे परिस्थिति में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो दबे ना बल्कि वो और आपस से जुड़ सके?
5: हाँ, तो इसीलिए हम लोग टीचर्स के साथ भी काम करते हैं कि कैसे फैसिलिटेट करना है बच्चों को, कि वो एक फैसिलिटेटर का भी वर्कशॉप होता है जो हम लोग कराते हैं, मेरे जो कोलैबोरेटर है अजहर वो भी कराते हैं कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है
4: जी, जी।
5: कि बच्चे क्या बच्चों को अपने समान कैसे सोचना है कि वो हमारे समान है, वो हमारे हमसे नीचे नहीं है, वो हमसे एज में छोटे हैं, बस वो हमसे एज में बाद में आए होंगे
4: जी,
5: पर
4: जी।
5: वो ऐसे कुछ जानते होंगे जो हम नहीं जानते हैं, तो उनको समान सोच के ही करना है ट्रीट, छोटे सोच के या फिर ये तो कुछ नहीं है अरे चलो चलो नहीं करना है, उनको इंसान समझ के ही ट्रीट करना है।
4: बिल्कुल, चूंकि रेडियो के माध्यम से बहुत बच्चे और बच्चियां

0: सुन रही हैं
1: जी
0: आपको,
1: जी जी
0: और शायद उनको भी इंटरेस्ट जगे कि हमको इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। गांव में बहुत सारे कलाएं हैं, कुछ लोग जो है कि तबला बजा लेता है, कुछ ढोलक बजा लेते हैं, कुछ हारमोनियम भी बजा लेता है, लेकिन वे जो प्रेजेंटेशन करने में थोड़ा डरते हैं। ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो सामने वाला है वो भी कुछ नहीं जानता है,
0: बिल्कुल
1: वो दिखाता है
0: जी
1: कि वो
0: जी जी
1: जानते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आप जब कर रहे हो, आप जब बजा रहे हो, आप जब गा रहे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: सोच के आपको करना है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो निश्चित रूप से इससे बिल्कुल सफलता की ओर जुड़ सकते हैं। और हमको लगता है कि अगर किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में अगर संगीत को जोड़ दिया जाए, या तो जो है कि नृत्य को जोड़ दी जाए, या फिर वाद विवाद को जोड़ दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसके अंदर के जो छुपा हुआ दबूपना है वो उभर करके सामने आएगा और निरंतर विकास कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, चलते चलाते क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रोता लोगों से, जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व से और कृतित्व के माध्यम से, चूंकि बहुत सारे लोग सुनने का काम करते हैं, करने में कम विचार, जैसे अभी मान लीजिए मोबाइल ले लिया जाए तो गाना सुनता तो सब लोग है लेकिन गाने के प्रयास नहीं करते हैं, बजाते हुए सुनता सब कोई है, बजाने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: ऐसे लोगों से ये कहना है कि मैंने भी कहीं से शुरुआत किया था, मैंने आप भी जो आज काम कर रहे हो आपने भी कहीं से शुरुआत किया था,
0: जी जी जी
1: जो भी जहाँ पर भी है उन्होंने कहीं से भी उनका एक शुरुआत हुआ था, तो वो
0: बिल्कुल
1: शुरुआत करना है, बस ना डर के वो शुरुआत, वो फर्स्ट स्टेप लेना है,
0: जी जी
1: बाकी तो होता जाएगा, बाकी आपको लोग मिलते रहेंगे और अच्छे ही लोग मिलेंगे, खराब
0: बिल्कुल
1: लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे ही लोग मिलते जाएंगे।
0: जी।
1: हाँ
0: तो श्रोताओं देखें, ये मधुरिमा तरफदार जी थी, या वो आपसे बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी कि कर बहिया बला अपनी छाड़ी बिरानियास, जाकर आंगन है नदी सोकत मर्त प्यास, कार्य करिए कर्मण्येवाधिकारः से माफले सुकदाचन, आप काम करते रहेंगे निश्चित रूप से आपको फल अच्छे मिलेंगे। किसी भी प्रकार के कला प्रदर्शन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छी जानकारी दे रही थी मधुरिमा तरफदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: भैया
4: हाँ भैया देखा ये रही हाँ मधुरमा तरफदार बच्चों के सर्वांगीण विकास में रंगमंच शिक्षण का योगदान इनसे जगत नारायण भैया बातचीत करते रहना तो बिना देर के लिए हम कतई बचवा लोगों के मुख से एक बाल गीत सुन
3: लिया भैया।

0: नहीं
1: नकली
0: भैया,
1: भैया। हाँ भैया, देखो भैया, एक ऐसा कला जो मन के खुश करे वाला,
0: बिल्कुल
1: भावना के व्यक्त करे में मदद कराला, और हमसे संस्कृत से भी जोड़ाला,
0: बिल्कुल
1: और वह संगीत जो बचवा लोग बड़ी बखूबी से सुनावत रहना और जुड़ल रहना, और उनके अच्छे से बतावा कि संगीत में रुचि रखने से कितना, मतलब उनके पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक शक्ति मिलल भैया।
0: बिल्कुल सही बात कहो नखरू भैया। देखें बचवा लोगन, अगर हसत भी हसत बाँ गावतां खेलतां कूदतां तो निश्चित बा कि देख कर उनके हम लोगन का जौन मन बा वो भी प्रसन्न होला। अब देखा धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को जौन समय बा वो हो चलल बा, बचवा लोगन से विदा लेवल जाए चलई के। तब बचवा
1: बोला
0: बोला
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

0: बच्चे अभी अपना कार्यक्रम बाल गोपाल सुन रहे थे 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से राहत फतेह अली खां की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सोहेल सेन ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म मिले ना मिले हमसे, राहत फतेह अली खां और अनुपमा राग की आवाज में। साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पैडमैन का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अमित त्रिवेदी ने। और इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का बढ़ा है विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को प्रदान किया जा रहा है समान अवसर। और प्रदेश में कल मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का निर्जला व्रत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान में तैयार अंग प्रत्यारोपण, विस्तारित क्षमता के इमरजेंसी वार्ड और अन्य कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने संस्थान में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष से कम समय में ही ये संस्थान चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा का बेहतरीन केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण यूनिट की शुरुआत एक बड़ी चिकित्सा सुविधा साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विगत 9 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला खड़ी की गई है।
2: आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, और जहां पे कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं, कोई सुविधा में आच्छादित नहीं हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है, तो सीएम रिलीफ फंड में हम उसको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराते हैं, जहां से उसको सहायता मिल जाती है, वो अपना उपचार कहीं भी जाके करवा सकता है, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ इसने अपनी प्रगति को की है, वह अपने आप में ढेर सारे पेशेंट्स को इसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
0: समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में मजबूत हुई चिकित्सा सेवाओं ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने का काम किया है। समारोह को चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री रायबरेली के उचाहार में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिव भक्ति भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सनातन और हिंदू धर्म में जाति के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाता है, ये कर्म आधारित व्यवस्था है। इसमें सबका एक ही लक्ष्य धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना है। रक्षा मंत्री ने आज आगरा में आयोजित खटीक समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि

0: उनकी पहचान केवल किसी एक पेशे या किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं रही है। खटिक समाज धर्म के लिए समर्पित रहने के साथ उसकी रक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को समान अवसर देने के लिए काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़े।
1: हमारी सरकार अंत्योदय और सर्वोदय की भावना के साथ काम कर रही है। सर्वोदय यानी समाज में सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, यही हम लोगों की सोच है भी। और अंत्योदय यानी समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हैं उनका भी उदय होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है और सारे हिन्दुस्तान में यह हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास के लिए जाना जा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च सांसद पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद जगदम्बिका पाल का आज बस्ती पहुंचने पर जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों और नीतियों पर जनता का विश्वास कायम है। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
2: अभी आपने ब्रिक्स का सम्मेलन देखा है, जिस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, लेकिन आज भारत विश्व में एक नई ताकत और एक नई व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है।
0: प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर आज गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन राष्ट्र सेवा, जन सेवा और अंत्योदय के संकल्प को समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाला ये अभियान सेवा और जन कल्याण के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया है कि कल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रशिक्षण एवं प्रबंध अकादमी में आयोजित होने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला में 33 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, FLC सुपरवाइजर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर कल भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा, जिसकी सभी तैयारी पूरी हो गई है। गणेश उत्सव का संचालन करने वाले भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि गोमती के किनारे कल से 25 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव का पंडाल कोलकाता से आए करीब 60 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।
3: अमेरिका के न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर हमारा मुख्य द्वार का गेट बनाया गया है। 13,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है वातानुकूलित वाटर प्रूफ, और 6,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बनाया गया है जहां भक्त लोग बैठेंगे, गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। हमारे अपने 60 आदमी लगेंगे जो कि महिलाएं और पुरुष, जो कि सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। मोदक कानपुर के प्रसिद्ध हलवाइयों के द्वारा बनाया जाएगा जो कि भक्तों को बांटा जाएगा।
0: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व कल मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा और निर्जला व्रत रखेंगी। इस मौके पर श्रावस्ती जिले के प्रसिद्ध विभूतिनाथ मंदिर में आसपास के जिलों के साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्त आज से ही पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का बढ़ा है विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6th स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित

0: कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को प्रदान किया जा रहा है समान अवसर। और प्रदेश में कल मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी, महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का निर्जला व्रत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आपकी चाय।
2: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना। अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जलेबी का गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रशांत इंगोले और कुणाल वर्मा ने।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: टाइगर जिंदा है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म से आतिफ असलम की आवाज में। विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं इरशाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ओबरा केंद्र और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:41 हुए हैं। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत

को हम सुनवा रहे हैं फिल्म ट्यूबलाइट से। गायक कलाकार हैं आतिफ असलम, गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का है।

युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुर्क बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रूपए और 21 विजेताओं के लिए 11,100 रूपए का सांत्वना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर है 8737981010। तीसरा नंबर है 7007445358।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म काबिल का गीत, जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ में। नासिर फराज के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म ऑल इज वेल से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी 2 का गीत अंकित तिवारी की आवाज में। संदीप नाथ के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
2: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
2: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
2: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से

0: आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, और इसी संदेश के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना सुखविंदर सिंह और शोभा मुगदल की आवाज में प्यारा सा गीत, और इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कब्जा का गीत साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज में। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं हम फिल्म हीरो का गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, हीरो फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में प्यारी सी गज़ल सुनी और इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए कार्यक्रम में आगे सुन लेते हैं ये संदेश।
1: युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुर्क बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रूपए और 21 विजेताओं के लिए 1,100 रूपए का सांत्वना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर है 8737981010। तीसरा नंबर है 7007445358।
0: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेफ के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
8: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
10: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निदेश श्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champions Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. Now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म लव मैरिज से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ओबरा केंद्र और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:25 हुए हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे हैं फिल्म छाया का गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलील चौधरी।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंडियन बाबू का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म शिखर से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल देव कोहली ने लिखे हैं और संगीत आनंद राज आनंद का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ओबरा केंद्र और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:42 हुए हैं। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म तुझे मेरी कसम से। गीत के बोल महबूब ने लिखे हैं, संगीत विजू शाह का है और आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना फिल्म फिज़ा का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अनु मलिक ने, और इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित सिंह पदम।
1: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी 3 पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम, जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने।
2: Along with learning from his father, Sumit is learning sitar under guru shishy parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top grade artist of Akashwani and an acclaimed sitarist carrying the generations old legacy of his guru Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
1: Akashwani ke A grade kalakar Sumit lambe samay se Bharatiya Shastriya Sangeet ka jadoo bikher rahe hain और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
2: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include Sangeet Ratan Samman, Kala Nidhi Samman, Swar Sadhak Samman and Rashtriya Kala Gaurav Samman.
1: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
2: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the

0: classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
1: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबित गत तेंताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
0: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein Alap is followed by Jod Alap, Jod Jhala, and then Vilambit Gat in Teen Taal, Madhyalay Gat in Mat Taal, and Drut Gat is in Teen Taal.

0: ये था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम will now present राग देस। आलाप is followed by मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of Akashvani Jalandhar.

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति

0: के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।